मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार रविवार दिनांक 5 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन और पहली सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार का अनुप्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का पूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति

0: संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन प्रभु स्मरण में लीन होने और भक्ति रचनाओं से भरपूर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए आज की आराधना का आरंभ करते हैं समूह स्वर में इस देशगान से।

श्रोताओं, इस देशगान के बाद आइए कार्यक्रम आराधना में करें श्री हरिवंदना। स्वर अजीत कड़कड़े का है।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। अब आइए आराधना में करते हैं भगवान भोलेनाथ की स्तुति। स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

महेंद्र कपूर के स्वर में भी हमने ये भक्ति रचना सुनी। श्रोताओं अब आइए आज की आराधना के आखिर में सुनते हैं ये भक्ति रचना। स्वर तृप्ति शाक्या का है।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 होने वाले हैं। कार्यक्रम प्रकाश किरण अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इसमें सुनिए बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से पाठ।
2: तपस्वी अकोधनो होती अनुपनाही, तपस्वी अनुसुखी होती अमच्छरी। सच्चा तपस्वी क्रोध और वैर से रहित होता है। जो तपस्वी सच्चा होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से मात्सर्य नहीं रखता। अत्त दीपा भिक्खवे विहरथ अत्त सरणा अनन्य सरणा, यम अकुशलम तम अभिनिवेज्ये यासि, यम अकुशलम तम समादाय वत्ते यासि, इदम खोतात तम अरियम चक्कवत्तिवतम। हे भिक्षुओं,

0: आत्मदीप होकर, स्वयं प्रकाश होकर और आत्मसरण होकर यानी स्वावलंबी होकर विहार करो। किसी दूसरों के भरोसे मत रहो। जो बुराई है उसका त्याग करो और जो बुराई है उसे स्वीकार करो। यही सबसे श्रेष्ठ आर्य व्रत है। अधनानं धने अननुपदीयमाने दालिद्यदयं वेपुल्लमगमासी दालिद्यदये वेपुल्लं गते अदिन्नादानं वेपुल्लमगमासी। निर्धनों को धन दिए जाने से दरिद्रता बहुत बढ़ गई और दरिद्रता के बढ़ जाने से चोरी बहुत बढ़ गई। धम्मो वसेठो जने तस्मि दिट्ठे चेव धम्मे अभिसंपरायंच। धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस जन्म में भी और परलोक में भी वह हमारा हितकारी है। पाणातिपातो अदिन्नादानं मुसावादो च उच्यति परदार गमनं चेव नप्रशंसन्ति पंडिताः। जीव हिंसा, चोरी, झूठ और परस्त्री गमन ये सब कुत्सित कर्म हैं। इन कर्मों की पंडित लोग कभी प्रशंसा नहीं करते। छन्दागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति दोषागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति मोहागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति भयागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति। मनुष्य पाप कर्म जो करता है वो राग के वश होकर करता है, द्वेष के वश होकर करता है, मोह के वशीभूत होकर करता है और भय के वशीभूत होकर करता है। छंदा दोषा भया मोहा यो धम्मं नातिवत्तति आपूरति यसो तस्य सुक्कपक्खे वचंदिमा। जो व्यक्ति राग को, द्वेष को, भय को और मोह को छोड़कर धर्म का पालन करता है, धर्म का अतिक्रमण नहीं करता, उसकी कीर्ति उसी प्रकार बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें। जूतप्रमादत्थानानि योगो भोगानम् अपायमुखम् पापमित्तानि योगो भोगानम् अपायमुखम् आलस्यानि योगो भोगानम् अपायमुखम्। जुए आदि खेलना, प्रमाद स्थानों का सेवन ऐश्वर्य के विनाश का कारण है। बुरे मित्रों की संगति यह भी ऐश्वर्य के विनाश की हेतु है और आलस्य में पड़े रहना भी ऐश्वर्य को नष्ट करता है। संदिठिका धनजानी कलहप्पवड्ढनो रोगानम आयतनम अकित्ति संजननी कोपीन निदंसनी पैयाय दुब्बलीकरणी। मद्यपान तत्काल धन की हानि करता है, कलह को बढ़ाता है, रोगों का घर है, अपयश को पैदा करता है, लज्जा को नष्ट करता है और बुद्धि को दुर्बल बनाता है।
1: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रहे थे बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से पाठ। ये आकाशवाणी रायपुर है।
2: प्रकाश किरण। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। गायन स्वर रविंद्र साठे का है और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: रामचरितमानस का गायन भाग 114वां अभी आप सुन रहे थे। गायन स्वर रविंद्र साठे का था और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम खेती की बात का। सामयिक सुझाव का विषय है बरबट्टी की खेती करें लाभ कमाएं।
1: किसान भाइयों, फलीदार सब्जियों में बरबट्टी का एक प्रमुख स्थान है। इसका प्रयोग दाल और हरी फलियों के सब्जी के रूप में किया जाता है।

0: इसकी पत्तियां पत्तेदार सब्जी और हरे चारे के रूप में उपयोग होता है। यह प्रोटीन मुख्यतः एमिनो एसिड का अच्छा स्रोत है। इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। बरबट्टी की कुछ किस्में जो हमारे अंचल के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें लोबिया गोमती, इसकी अवधि 50 दिन, उत्पादन क्षमता 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके पौधे झाड़ीदार होते हैं। यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील है, अतः गर्मी व बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त किस्म है। फलियां हल्के रंग की 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। दाने बड़े आकार व लाल रंग के नाभिकीय होते हैं। पूसा बरसाती, इसकी समय अवधि 45 दिन होती है। उत्पादन क्षमता 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त है। इसकी फलियां हरे रंग की 26 से 28 सेंटीमीटर लंबी व दाने बड़े हरे रंग के होते हैं। उसी तरह एक किस्म है पूसा कोमल, इसकी समय अवधि 60 दिन की होती है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके पौधे झाड़ीदार होते हैं। यह गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। फलियां हल्के रंग के कम रेशे वाले 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह किस्म जीवाणु मलानी रोग के प्रतिरोधक है। दाने क्रीम रंग के होते हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी के लिए खेत की तैयारी की यदि बात करें तो खेत की एक गहरी जुताई कर 2-3 बखर चलाकर मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना लें। अलग अलग किस्मों के लिए बीज दर अलग अलग अनुशंसित है। जैसे झाड़ी नुमा के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आधा चढ़ने वाले 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चढ़ने वाले में 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दाने व सब्जी दोनों प्रकार के किस्मों के लिए छिड़काव विधि में 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व एक एक बोने वाली किस्मों के लिए 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नर्सरी का निर्माण की बात करें या रोपण दूरी की बात करें तो सबसे पहले झाड़ी नुमा किस्मों के बीजों को 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढे में 1-2 बीज बोएं। अर्ध चढ़ने वाली किस्मों में 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखें। चढ़ने वाली किस्मों में 45 से 60 सेंटीमीटर व्यास, 30 से 45 सेंटीमीटर गहरे व 2×2 मीटर की दूरी पर प्रति गड्ढे में 3 पौधे होना चाहिए। वर्षा ऋतु में बीजों को 90 सेंटीमीटर की ऊंची भूमि पर लगाना चाहिए। अधिकतर क्षेत्रों में बरबट्टी की बुआई गर्मी व वर्षा ऋतु में की जाती है। खरीफ मौसम में जून जुलाई में बोया जाता है व अगेती किस्मों को अगस्त सितंबर में बोया जाता है। अभी गर्मी के मौसम में फरवरी मार्च में बोना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल मई में भी बुआई कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन की यदि बात करें तो 1-2 बार गुड़ाई करना चाहिए, जिसे नींदा का नियंत्रण होता है व जड़ों को हवा मिलती है। बुआई के बाद 25 से 30 दिन तक निंदाई गुड़ाई आवश्यक है। खेत में फ्लूक्लोरालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। एला क्लोर या नाइट्रोफेन का छिड़काव 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। स्टाम्प 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव 30 दिनों तक नींदा नियंत्रण करें। चढ़ने वाली किस्मों में बांस की बल्ली या जूट प्लास्टिक वायर से सहारा देना चाहिए। जब पौधों में बेल आने लगे तब लकड़ी का सहारा देना चाहिए। उर्वरक के साथ हल्की मिट्टी चढ़ाने से फसल अच्छी होती है। अत्यधिक पत्तियों को तोड़कर अलग कर देना चाहिए, जिससे फूल व फल अच्छी तरह से लग सकें। बरबट्टी पानी के जमाव के प्रति संवेदनशील है एवं इसे अन्य सब्जियों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। दाने वाले किस्मों को 2 या 3 सिंचाई फूल एवं फल्ली बनते समय देना चाहिए। सब्जी वाली किस्मों को 4 से 5 दिन के अंतराल से फूल लगते समय सिंचाई करना चाहिए। फूल लगने के पहले सिंचाई रोक देनी चाहिए। उर्वरक की उपलब्धता के आधार पर 15 से 20 टन गोबर की खाद की मात्रा खेत की तैयारी के समय भूमि में अच्छी तरह मिला दें। बरबट्टी को नत्रजन की आवश्यकता कम होती है। खेत की तैयारी के समय 150 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा को खेत तैयारी के समय देना चाहिए। अगर बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया गया हो तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की 100 किलोग्राम डालें। जिंक की कमी वाले खेत में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट डालना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों बरबट्टी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: खेती की बात, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। सामूहिक सुझाव का विषय था बरबट्टी की खेती करें, लाभ कमाएं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50

हो चुके हैं। समय है आपको हमारी इस सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। तो आइए आपको कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा आज रात 10 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से ही अनुप्रसारित करेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात 9:30 पर। कार्यक्रम कानून की बात आकाशवाणी रायपुर से रिले किया जाएगा आज शाम 6:30 पर, जिसमें आज का विषय होगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। आकाशवाणी रायपुर से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनिएगा शाम 6:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण होता है शाम 5 बजे।

कार्यक्रम आप मन के गीत आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। अभी सुबह 8:30 पर सरगुजिया लोक कथा श्रृंखला के तहत किस्सा कहानी में सुनिएगा सरगुजिया कहानी टिकुलिया रानी। सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 8:45 पर, जिसमें आज उड़िया गीत का प्रशिक्षण पाठ सुनिएगा। शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:10 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे बातचीत और फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण हम करते हैं, जिसमें आज सुनिएगा क्रम युवा सोच और युवा पसंद।

शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। आज के आकर्षण होंगे सामयिक चर्चा, कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा 1:40 पर, कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश 8:00 सुनिएगा, जिसमें हम आपको सोशल मीडिया आधारित आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाते हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गुंजन जंगल का प्रसारण समय है 7:00 और गोधुली का प्रसारण समय है 6:20 पर, जिनमें आप सुन सकेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। चंद गजलों का लुत्फ उठाएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में 7:15 पर, मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग सुनिएगा 12:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा 2:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत समाचार का अनुप्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: सेमीकंडक्टर केंद्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।

0: कर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं विंशति कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन पञ्चशत कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000-तमवर्षान्तं यावत् भारते पञ्च सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायाम् एषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत सादरी लोकगीत से करते हैं और आपको सुनवा रहे हैं सियाराम और साथियों का गाया ये जलसा गीत।

श्रोताओं, लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम गूंजे जंगल में सुनते हैं ये सरगुजिया लोकगीत। सुनते हैं चैन साय और साथियों का गाया ये रिंजा कर्मा।

श्रोताओं, आज के गुंजे जंगल कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं एक सरगुजिया लोकगीत। प्रस्तुत है केंदाराम और साथियों का गाया ये छोटे साजन करमा।

इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, अभी हमने जो गज़ल सुनी उसमें आवाज़ थी चंदन दास की और शब्द रचना बशीर बद्र की थी। अब आइए कार्यक्रम सुगम संगीत में आपको सुनवाते हैं एक और गज़ल। आवाज़ें भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की हैं और इसे लिखा है खतील राजस्थानी ने।

श्रोताओं, अब आइए आज के कार्यक्रम सुगम संगीत के आखिर में सुनते हैं ये नगमा। आवाज़ पंकज उदास की है और इसे लिखा है जफर गोरखपुरी ने।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए स्थानीय जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपका दोस्त संजय। श्रोताओं, जंगली हाथियों की गतिविधियां और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है।

इसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली सूचना बलरामपुर ज़िले से है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित होगी। इसी प्रकार हाईस्कूल द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। उक्त परीक्षाओं के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 12:15 तक का समय निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा के लिए ज़िले में 22 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में सतत निगरानी, निरीक्षण एवं अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने हेतु अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी तथा नायब तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय निरीक्षण दल का गठन भी किया गया है, जिनके द्वारा सतत रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। अब आइए नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम में सुनते हैं आज का पहला गीत। फिल्म का नाम है गाइड। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना शैलेंद्र की है और संगीत SD बर्मन ने दिया है।

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली एवं लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु शिक्षकों से प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरगुजा ज़िले से जो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु अपना नाम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन 15 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगी। वेबसाइट www.nationalawards2teachers.education.gov.in के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। राज्य एवं केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ही इस हेतु पात्र होंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक संविदा शिक्षक शिक्षा मितान शैक्षिक प्रशासक और निरीक्षक पात्र नहीं होंगे। पुरस्कार हेतु नामांकित शिक्षक को अपना प्रस्तुतिकरण देना होगा। आवेदन करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय या न्यायिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ही चयनित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा किसी आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। वेबसाइट www.nationalawards2teachers.education.gov.in के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक शिक्षक ऑनलाइन प्रविष्टियां निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेवें।

बूंद जो मोती बन गए। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ मुकेश की थी। आइए श्रोताओं, नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम में अब एक नज़र डालते हैं अगली सूचना पर। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अंतर्गत संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में अध्यापन सह कोचिंग कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है, जिसमें वित्तीय प्रस्ताव भाग 3 FB1 तृतीय लिफाफा हेतु निर्धारित फॉर्मेट में आंशिक संशोधन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट www.sarguja.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है। अगली सूचना जिला सरगुजा से ही है। कलेक्टर ने गुरुवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ अंबिकापुर के केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बालिका छात्रावास भवन का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न निर्माण और मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 15 अगस्त से छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जाना है। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन में आवश्यक मरम्मत सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को भी निर्देश दिए कि छात्रावास संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार कर भेजें। आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जो खूबसूरत सा गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म बुड्ढा मिल गया से। इस गीत में आवाज़ थी किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत आर डी बर्मन का था। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में अब आइए सुनते हैं अगली सूचना।

श्रोताओं अगली सूचना सुनिए। निरीक्षण के क्रम में कलेक्टर अंबिकापुर के खलीबाई स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां उपलब्ध शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, छात्रावास, मेस, रसोई सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट तैयार करने आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिए।

तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम में अगली सूचना है, कलेक्टर सरगुजा ने पटवारी प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण कर वहां संचालित प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षु पटवारियों से मुलाकात कर प्रशिक्षण से जुड़े उनके अनुभवों की जानकारी ली और उन्हें पूरी लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कक्षा के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए फील्ड में भी जाकर प्रशिक्षण लेने कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे भविष्य में राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। अब आइए आज के नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं।

0: लता मंगेशकर के गाय फिल्म अनपढ़ के इस गीत के साथ ही जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात और फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क

0: मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय

0: लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की चार विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने

0: 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of Regional Air Connectivity Scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: Jodhpur mein naye airport terminal ka udghatan kiya.

0: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी के आज के इस अंक में हम आपको सुनवा रहे हैं सरगुजिया कहानी टिकुलिया रानी। संकलन व लेखन शिवव्रत सिंह पावले का है, संयोजक हैं नागेंद्र दुबे और प्रस्तुति है शोभनाथ साहू की।
1: एक राज में एक गोट राजा कर दुई गोट बेटा रहीन। जब उमन बिहा कर एक लायक हुईन तय राजा

0: मन कर बिहा करे कर तैयारी करिस। बाकी बड़का बेटा हर कोनो राजकुमारी जग बिहा नहीं करिस। तय राजा हर छोटे बेटा कर बिहा टिकुलिया रानी जग कर दहिस। देखे में ढेरे सुग्गर अकबरी सोन कसिन बरत रहिस। ओकर चुंदी हर सोना के रहिस, जेहर चावेर बरोबर कन्या ले खाले घिर ले।
1: छोटे भाई हर टिकुलिया रानी ला तीनों खूंटे पूरा पश्चिम और उत्तर बाट जाए ला दो कहे रहीस, बाकी दक्षिण खुट जाए बर बरजे रहीस। टिकुलिया रानी अपन मन ही सोचीस कि मोर घर मुआर का बर दक्षिण खुट ला बरजी ना है, कहीं ये में जरूर एच भेदा है, पता करे चाहिए कही के मुड़ मिसनी मैन माटी लोटा उलुगा बंडी धैर के दक्षिण बाट नंदी में स्नान करे उड़ देहीस। मुड़ ला मिसत घरी एगो चुंदी हर टूट गईस। टिकुलिया रानी समझ गईस कि एकरे बरी एक मोर घर मुआर बरजे रही। फिर का करीस कि वही जग एगोट बेल फेड़ रहीस, एगोट बेल ला फोर के और चुंदी ला भीतरे कैर कुन्हा बेल ला जटकाय देहीस, तहां फेर नंदी में पहुआ देहीस। तभो ले चुंदीक सुघराई में बेल हर जग और मगर बरत पोहात रहे।
0: खाल बाट उत्तर खुटे दुई भाई अपन नौकर चाकर कर संगे शिकार खेले गए रहे और हिरना मिर्गा मायर के नंदी धरी रंधना खाना उमन कर चलत रहीस और नंदी में झिरहिर खेलत रहीन। जब बेल ला पोहात देखीन ता का जायत है कहके छाने बर कूदीन। बड़े भाई और नौकर चाकर छायन देखीन ता बेल हर ककराते जाए और जब छोटे भाई हर छाने बर गईस तब हर धरी आएगीस। बेल ला धरी में लाइन के खोलीन ता सोना के चुंदी रहे उमें। छोटे भाई मने मन समूझ गीस कि रानी कहना ला मोर नहीं मानिस। बड़े भाई चुंदीला देख के कहिस,
2: ए चुंदी हर एतेक सुघर ता ए चुंदीदार हर कतेक सुघर होही। चाहे ये चुंदीदार कोई रहे, एक न एक दिन एके अपन रानी बनाए के रहूं मैं।
1: छोटे भाई वही दिन ले संसो में पैर गईस। घरे आईस त टिकुलिया रानी ला जंगाए के कहिस,
0: डौकी मन कर नाक ले बुइत और ठेहुना ले बल, तो के मना कर रहे रानी त काबर गए।
2: टिकुलिया रानी हर रोनू रोनू होए के कहिस,
3: ने जी मैं का जानू कि अतिक मान हो जाही, हे भगवान मोर मरना नहीं आए।
0: यही नियर बात चलत रहीस तेही घरी बड़े भाई हर अपन नौकर चाकर मन जग जंगल में हिरना मिर्गाला पेड़ में बंधुआ के अपन भाई ला लेहे बर आएगीस और दूरा ले कहे लागीस,
2: खोलू खोलू भैया मोरे बजूरा के वारी हो राम, ए राम चलू भैया खेले शिकारे हो राम, ए राम चलू भैया खेले शिकारे हो राम।
1: छोटे भाई हर बहाना कर देखीस, बाकी बड़े भाई नी मानिस। छोटे भाई टिकुलिया रानी ला एगोट कटोरिया में गाय गोरस और एगोट कटोरिया में पानी और दूबी कैर के कहिस,
0: देख रानी ए गोरस हर रकत हो जाही और दूबी हर झुरमुराए जाही त समझ जाबे कि मैं जिंदा नहीं हूं। जब ले इमन ताजा रही तब ले मुके बढ़ियन जानबे।
1: ऐसे कही के छोटे भाई घोड़ा चढ़ के अपन बड़े भाई संगे जंगल में चल दहिस। पहुंचते मंतर बड़े भाई हर अपन नौकर चाकर मन जग हिरना मिर्गा के संगे एक फेड़ में रच रचाए के छोटे भाई ला बंधवाए दहिस। फिर धनहु चिवार तैन के कहे लगीस,
2: काम है मैं मारो हिरना मिर्गा हो राम, ए राम काम है मारो सहोदर भाई हो राम।
1: तहां फेर कहिस,
2: धनहु चिवारे मारो हिरना मिर्गा हो राम, ए राम बंदूकी में सहोदर भाई हो राम।
1: फिर हिरना मिर्गा वो अपन छोटे भाई ला मार दहिस, तेकर फेर कहे लागिस,
2: काम है मैं तोपो हिरना मिर्गा हो राम, ए राम काम है मैं सहोदर भाई हो राम, ए राम काम है मैं सहोदर भाई हो राम।
1: तेकर फेर कहिस,
2: परसा पाने तोपो मैं हिरना मिर्गा हो राम, ए राम धोती चिरी सहोदर भैया हो राम, ए राम धोती चिरी सहोदर भैया हो राम।
1: तहां हिरना मिर्गा ला परसा पतई में ढापीस, अपन छोटे भाई ला धोती के छोर ला चीर के ढाप दहीस और घोड़ा चढ़ के टिकुलिया रानी जग जाए पहुंचीस। ओ बाट गोरस हर रकत बन गईस और दूबी हर झुरमुराए गईस।

0: टिकुलिया रानी सातो फाटक ला हुरक के लोर बहात रहिस। तेही घरी बड़े भाई पहुंच के कहे लगिस,
1: खोलू खोलू रानी मोरे बजूरा के मारी हो राम, ए राम हमु धनी भूखे पिया से हो राम, ए राम हमु धनी भूखे पिया से हो राम।
2: ता टिकुलिया रानी भीतरे ले कहिस,
0: कैसे के खोलो मैं बजुरा के वारी हो राम, ए राम रव रही भसुर गोसैया हो राम, ए राम रव रही भसुर गोसैया हो राम।
2: तहा बड़े भाई भड़ायत ले केवारी ललतियाईस, ता केवारी खुल गिस। फिर दूसर दूरा में ओहिच नियर कहे लागिस, ऐसने करत करत सातो फाटक ला खोल ढारिस। ताले टिकुलिया रानी है डोली में बैठ के चारों कहार जग डुहुआए के अपन घर मुआर जग जाय लागिस। बड़े भाई हर जब देख पारिस तब धरे बर कूदिस, अब लमरो तब लमरो करत हर लमर जाते। तले टिकुलिया रानी अपन घर मुआर के लहाज जग लमर किस। बड़े भाई छुए बर करते तेही समय टिकुलिया रानी हाथ जोड़ के कहिस,
0: देखा अब तू पुरुष और मैं नारी तो होबेज करबो, बाकी तुहर एक टिपका लहू बचाल भाई है ता इकर माटी काठी तो कर दे।
2: बड़े भाई मान जाते, रानी ओके आगी लाने बरी भेज दीस। तेही घरी लहासला कोरा में कैर के और पढ़ पढ़ के ओहर रोए लागिस, जेला सुइन के चिरैयो चुनगुन मन रोए भरी।

0: राम। पावे के पन्ही राजा तू ही ला खुले हो राम। ए रामाज कैसे माची बन के हो राम। ए रामाज कैसे माची बन के हो राम।
1: एही कसी नाठो आंगला कही कही के उहर रोए लागिस। फिर छेदा में कहिस,
0: असल के हो हूँ मैं टिकुलिया रानी हो राम। ए रामचर में आगे सुलगे हो राम। ए रामचर में आगे सुलगे हो राम।
1: तहां लुग्गा के अचरा में आगे फमय कुठिस। बड़े भाई कर हाथ ले दुयो भंग भंगाए के जरे लागिन। तहां ओहू हर आगी में कूद दहिस और जर मर गिन।
0: तहां फिर का होइस कि वही डगरे शंकर पार्वती आत नहीं। तर राय के कुढ़ा ला देख के पार्वती जाने बर चाहिन। शंकर भगवान उनकर जम्मो हाल ला कही सुनाई। तहां दो पार्वती जी छोटे भाई और टिकुलिया रानी ला जियाए बरी शंकर भगवान जगजीत कर देहिन। तब शंकर भगवान दुयो ला जियाए के अपन धाम उड़ देहिन। ए बार छोटे भाई और टिकुलिया रानी घरे आए कुन्हा राजपैठ चलाए लागे और छुट्टा सुघर जिंदगी बिताए लागे। तब जम्मो सुनैया भाई बहन हो भगवान कर घरे सही नियाव होते। ओकरे ले कहीं जायत कर गलती नी करे चाहिए।
1: प्रस्तुत इस लोक कथा में एक राजा के दो बेटे रहते हैं। बड़ा भाई विवाह नहीं करता है पर छोटे भाई का विवाह टिकुलिया रानी नामक राजकुमारी से हो जाता है जो बहुत ही सुंदर है और उसके बाल सोने के हैं। छोटा भाई उसे दक्षिण की ओर जाने के लिए मना करता है किंतु वो चली जाती है और उसी दौरान एक बाल टूट जाता है जिसे बड़ा भाई देखकर प्रण करता है कि ये सोने की बाल वाली स्त्री कोई भी हो उसे वो प्राप्त करके ही रहेगा। जब उसे पता चलता है तो टिकुलिया रानी को पाने के लिए अपने छोटे भाई को मार देता है। तब टिकुलिया रानी पति के साथ सती हो जाती है। ये देखकर बड़ा भाई भी जलती चिता में कूद कर प्राणांत कर देता है। बाद में पार्वती के कहने पर शंकर जी टिकुलिया रानी और उसके पति को जीवित कर देते हैं। फिर दोनों दाम्पत्य व राजसुख भोगते हैं। यही इस कहानी का सार था।
0: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी में अभी आपने सुनी कहानी टिकुलिया रानी। संकलन व लेखन शिवरत सिंह पावले का था। वाचन स्वर थे शोकनाथ साहू, कमलेश सिंह और मृदुल गुप्त के। संयोजक थे नागेंद्र दुबे और प्रस्तुतकर्ता थे शोकनाथ साहू। लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी की अगली कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे सरगुजिया कहानी सोना कर देवैया छेरी। आज यहीं तक, नमस्कार।

लोक कथा श्रृंखला के तहत कार्यक्रम किस्सा कहने में अभी हमने जो कहानी सुनी उसका शीर्षक था टिकुलिया रानी। प्रतिभागी थे मृदुल गुप्त, शुभनाथ साहू और कमलेश सिंह। संकलन एवं लेखन श्री शिवरत सिंह पावले का था। प्रस्तुतिकर्ता थे शुभनाथ साहू और संयोजन नागेंद्र दुबे का था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। अब सुनिए सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उड़िया गीत का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार हैं केसी पाणिग्रही।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी,
1: डाकी भी तुमको
2: तुमे जे सर्व नाम क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको तुमे जे सर्व नाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक तुमको नपारे दिखाई तुमे जे देखाओ ताहरे। आलोक तुमको
1: नपारे दिखाई
2: तुमे जे देखाओ ताहरे। तुमे जे बेढ़ी च कोटी विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे। तुमे जे बेढ़ी च
1: कोटी विश्वर
2: सबुरी भीतरे बाहरे।
0: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
2: लुहा होई तुमे झरी पड़ा परा
1: केते नयनर कोणरु
2: लुहा होई तुमे
1: झरी पड़ा परा
2: केते नयनर कोणरु हस होई पुणी
1: फूल परी फुट
2: केते जे नरम अधरु
1: हस होई पुणी
2: फूल परी फुट केते जे नरम अधरु क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको
1: तुमे जे सर्व नाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
2: एक दुई।
0: अब हम गाना सीखेंगे।
2: क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको 1 2 3 4

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ के तहत उड़िया गीत का प्रशिक्षण पाठ अभी हम आपको सुनवा रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में आज मैं आपके साथ हूं, आप सभी का दोस्त संजय। श्रोताओं, आज 5 जुलाई है और आज जन्मदिन है भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का। इनका पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु है और इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। पीवी सिंधु विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वे भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। हैदराबाद में जन्मी पीवी सिंधु के माता पिता आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। सिंधु के जीवन में खेल का अस्तित्व उनके जन्म के पहले से ही था। सैकड़ों पदक, खिताब और प्रतियोगिताएं अपने नाम कर चुकी पीवी सिंधु को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आइए इसी के साथ गुंजन कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म चमत्कार का गीत। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की थीं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, वन महोत्सव 2026 चल रहा है, जो भारत का वार्षिक वृक्षारोपण अभियान है। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। वन महोत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हरियाली, या कहें कि हरित आवरण का विस्तार करना वन महोत्सव का उद्देश्य है। वनों का हमारे जीवन में कितना अनिवार्य महत्व है, ये हम सभी भली भांति समझते हैं। मानव जीवन की जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ों से ही मिलती है। वनों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बादलों को वन ही आकर्षित करते हैं और इससे बारिश होती है और उसके बाद धरती पर जल स्रोतों में पानी के भंडार भरते हैं। आइए आज के गुंजन कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप जो गीत सुन रहे थे उसे हमने लिया था फिल्म नरसिम्हा से। इस गीत में युगल आवाजें थी अमित कुमार और अलका याग्निक की।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
1: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: श्रोताओं, वन महोत्सव हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में की गई थी। आप और हम जानते हैं कि मानसून के दौरान लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। इस दौरान पौधे पोषण के अभाव में नहीं रहते। वन हमें बहुत कुछ देते हैं। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाली आम जनता के लिए ये वन बहुत उपयोगी हैं। खाना बनाने के लिए सूखी और पेड़ों से स्वतः गिरी हुई लकड़ी जलावन के उपयोग में आती है। वन उपज बहुत से लोगों की जीविका का साधन है। लघु वन उपजें कई शासकीय योजनाओं के तहत वनवासी महिलाओं के आय का साधन भी हैं। इमारती लकड़ी भी नियम कानून के तहत इन वनों से ही बाजार में उपलब्ध होती है। आपको और हमें कभी वन भोज यानी पिकनिक पर जाने का मन हो तो हम कोई झरना तलाश करते हैं जो घने वनों के बीच अपनी कलकल ध्वनि से हमें मंत्रमुग्ध करे। अब समय है कार्यक्रम के अगले गीत का।

0: दस्तक, इस गीत का, इस फिल्म का गीत अभी हमने सुना। इसे गाया था उदित नारायण ने।
1: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
2: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
3: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
1: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
3: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
3: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharanganair@gmail.com।
4: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन, बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: श्रोताओं, एक पेड़ लगाएं, धरती को हरियाली से बचाएं। क्षमा कीजिएगा, एक पेड़ लगाएं, धरती को हरियाली से सजाएं। स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन, यही वन महोत्सव का संदेश है। वन महोत्सव के अवसर पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाना, विद्यालयों, सरकारी विभागों, सामाजिक संस्थाओं द्वारा विशेष कार्यक्रमों का संचालन।

पालन इस दौरान किया जा सकता है, और ये हमारी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी तो है ही, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। एक बार फिर वन महोत्सव के उद्देश्यों पर नज़र डालते हैं कि अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, जैव विविधता और वन्य जीवों का संरक्षण, स्वच्छ वायु, जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकना, ये सभी वन महोत्सव सप्ताह मनाने के उद्देश्य हैं। क्योंकि वन है तो जीवन है, और श्रोताओं नारा भी है कि तन मन धन सबसे ऊपर वन। आइए गुंजन कार्यक्रम की अगली पेशकश सुनते हैं। अगला गीत हमने लिया है फिल्म जुनून से, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव की हैं।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: श्रोताओं, बारिश का मौसम पेड़ लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है और पौधों की जड़ें आसानी से विकसित हो पाती हैं। बारिश के मौसम में वृक्षारोपण का फायदा यह है कि पौधों को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जड़ों का विकास तेजी से होता है, पौधों के जीवित रहने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने में मदद मिलती है। पौधारोपण की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। श्रोताओं, जरूरत है तो बस प्रयास की। प्रयास ये है कि पौधे के अनुसार उचित स्थान का चयन होने के बाद लगभग 1 या 2 फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदकर गड्ढे में मिट्टी के साथ गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर पौधे को सावधानी से लगाकर मिट्टी भर देनी है। पौधे के आसपास मिट्टी दबाकर सहारा दें और संभव हो तो ट्री गार्ड लगा दें। पौधा लगाने के बाद शुरुआती दिनों में देखभाल की ज़रूरत होती है। उसके बाद पौधे को वृक्ष बनता आप खुद देखेंगे और उस समय जो सुखद अनुभूति होगी उसे शब्दों में बयां करना अगर मुश्किल हो तो हमें खत लिख भेजिएगा। अमूमन बरसात में नीम, पीपल, बरगद, आंवला, अर्जुन, जामुन, आम के पेड़ लगाने योग्य हैं। इसके अलावा भी आप अपनी इच्छा अनुसार पौधारोपण करें, ये विनती है आपसे। आइए कार्यक्रम गुंजन का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सलामी से। इस गीत में आवाज़ है कुमार सानू की। गीत

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: श्रोताओं आइए बातें करते हैं जल संरक्षण की, क्योंकि जल संरक्षण का सबसे अच्छा अवसर हमें बारिश के मौसम में मिलता है। भले ही वर्षा ऋतु ने पूर्ण रूप से अपना रूप धारण इस साल अभी तक नहीं किया है, हम भरपूर वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पानी बरसेगा तो हमारा एक फर्ज होगा वर्षा जल संरक्षण का, ताकि संरक्षित किया गया ये जल हमें वर्ष भर काम आए और पानी की आवश्यकता पूरी हो सके। वर्षा जल संरक्षण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। गर्मियों में पानी की कमी कम होती है, पेयजल के स्रोतों पर दबाव घटता है, बाढ़ और जल भराव की समस्या कम होती है, कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहता है और इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता मिलती है। ये सभी वर्षा जल संरक्षण करने से हमें लाभ मिलते हैं। बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जी का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं हैं। इन्हें पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से सादर नमन और श्रद्धांजलि। इस गीत से पहले हम वर्षा जल संरक्षण के उपायों की बात कर रहे थे, तो इसके कुछ प्रभावी उपाय ये हैं कि हम अपने घरों की छत से वर्षा का पानी किसी बड़े टैंक में एकत्र कर सकते हैं। एक प्रभावी ढंग ये भी है कि सोख्ता बनाकर, जिसे अंग्रेजी में रिचार्ज पिट कहा जाता है, वो अपने घर के पास बनाकर छत या बारिश के पानी को ज़मीन में उतार कर हम जल संरक्षित कर सकते हैं। और भी उपाय है, जैसे तालाब, कुएं और झीलों का संरक्षण करके उन्हें पुनर्जीवन देकर छोटे बांध बनाकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण तो है ही कारगर उपाय। सबसे बड़ी बात ये कि अगर हमने वर्षा जल संचयन की किसी प्रणाली को अपनाया है तो हमें उस प्रणाली को भी संरक्षित रखना है। श्रोताओं, इन बातों के साथ साथ अब आइए आज के गुंजन कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी, उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णिक क्षति है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का निधन न केवल लोक कला जगत के लिए बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णिक क्षति है। अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। गौरतलब है कि तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग और आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज सुबह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस शिविर का कल शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक

प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू की गई। शिविर में सुशासन, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी

तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत भाड़म में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसके दो पुत्र शामिल हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के अनुसार व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जीआरपी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब मौसम संबंधी सूचना सुनिए। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान वर्षा 0 मिलीमीटर दर्ज की गई, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। तापमान संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए श्रोताओं, अब आपको हम अपनी इस सभा के लगातार कार्यक्रमों और आज की शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा आज रात 10 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से ही अनुप्रसारित करेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात 9:30 पर।

कानून की बात। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से रिले किया जाएगा आज शाम 6:30 पर, जिसमें आज का विषय होगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। आकाशवाणी रायपुर से ही अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 6:05 पर।

शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। आज के आकर्षण होंगे सामयिक चर्चा, किसान समाचार, कृषि संबंधी सामयिक खबरें और हमर किसान। कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा 1:40 पर। कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश रात 8 बजे सुनिएगा, जिसमें हम आपको सोशल मीडिया आधारित आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाते हैं। कार्यक्रम गोधुली प्रसारित करेंगे शाम 6:20 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग सुनिएगा 12:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा 2:02 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होता है शाम 5 बजे। कार्यक्रम आप मन के गीत आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:10 पर, जिसमें आज मुख्य आकर्षण होंगे बातचीत और फोन इन कार्यक्रम बात करेंगे गीत सुने। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण हम करते हैं, जिसमें आज सुनिएगा क्रम युवा सोच और युवा पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आपके खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीत आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:05 पर। गैर फिल्मी और फिल्मी भजन होंगे कार्यक्रम भजन संध्या में शाम 5:05 पर। रजनीगंधा कार्यक्रम में सुगम संगीत शाम 7:05 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट सुनिएगा रात 9:15 पर।

श्रोताओं, ये थी हमारी आज की सभाओं के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब आइए, वक्त है कार्यक्रम नए तराने का। सुनते हैं कुछ नए फिल्मी गीत कार्यक्रम नए तराने में।

कार्यक्रम नए तराने इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म टू स्टेट्स से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की थीं। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का था।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ये सुन सकते हैं।
1: हाँ, अभी तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

अभी हमने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म आई हेट लव स्टोरीज से। इस गीत के लिए संगीत दिया था विशाल शेखर ने। श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम नए तराने में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है आशिकी 2 और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिका

0: कापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम नए तरह ने इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, फिल्म टशन से। इस गीत में आवाजें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। गीत लिखा है कौशर मुनीर ने और संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है लव आजकल। इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: श्रोताओं लीजिए अब कार्यक्रम नए तराने में सुनिए फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का ये गीत। इस गीत को गाया है आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपदा ने। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म जब वी मेट का गीत। इस गीत को गाया है राशिद खान ने, शब्द रचना फैज़ अनवर की है और संगीत संदेश शांडिल्य का।

श्रोताओं कार्यक्रम नए तराने इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म ओह माय गॉड का ये गीत। आवाज़ें कैलाश खैर और मीत ब्रोज की हैं।

श्रोताओं, अब सुनिए आज के कार्यक्रम नए तराने का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बजरंगी भाईजान से। इस गीत को गाया है आतिफ असलम ने।

0: फिल्म बजरंगी भाईजान के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक

0: संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए गए। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का एक गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। संगीत निर्देशन अनु मलिक का था, बोल थे नवाब आरसू के। इस गीत के लिए हमें पत्र आया था ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर का। दिल्ली शहर मुरीगेट से फरमाइश करता थे कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से गीत सुना

0: अभिजीत गांवकर, राही सरिता गांवकर, सिद्धांत गांवकर, प्रिंस एकांश गांवकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से फरमाइश करता थे शैलेश गांवकर, वैशाली गांवकर, श्वेता सुमित गांवकर, कुमारी ध्वनि गांवकर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से पत्र भेजा था द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, छाविंद्र कुमार वर्मा ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर ने अपनी फरमाइश भेजी थी। आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहा है डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिय तन्मय, अनिष्का और राधिका गजभिय ने। औरंगाबाद से हमारे श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। चांदूर बिस्वा तालुका नांदूरा, जिला बुंठाणा महाराष्ट्र से फरमाइश करता है नारायण भाव खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना गणेश, कार्तिक खड़से, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं जीना मरना तेरे संग फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की, बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन समीर सेन और दिलीप सेन का है।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

अभी आप सुन रहे थे दिल फिल्म का एक गीत, आवाज़ें थी सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत से सजाया था आनंद मिलिंद ने। इस गीत को सुनना चाहा था रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय, मनीष ब्रोनो, कार्तिक, संजना, ललिता और परिवार के सभी सदस्यों ने। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम और अनिल राज मोटवानी ने इस गीत को पसंद किया था। झूलेलाल चौक तिलदा से फरमाइश करता थे हरीश, कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला। गांधी बाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी ने गीत सुनना चाहा था। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म कोयला का ये गीत। गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है करही भदर बालों से पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा, देवेंद्र कुमार, लक्ष्मीना, कुमारी लोशन और गीतिका। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ

होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कोयला फिल्म का एक गीत, आवाज थी उदित नारायण की। कार्यक्रम में आप सुनिए मन फिल्म का एक गीत, समीर के बोल हैं, आवाजें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, संगीत दर्शन राठौर और संजीव राठौर का है। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गांवहंकर राही, सरिता गांवहंकर, सिद्धांत गांवहंकर, प्रिंस एकांश गांवहंकर ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया ने गीत सुनना चाहा है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर और आरती ने पत्र भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन फिल्म का ये गीत। आवाज थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। बोल थे समीर के। संगीत निर्देशन दर्शन राठौर और संजीव राठौर का था। कार्यक्रम में अंतिम गीत के फरमाइश करता हैं देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभानी, संगीता निभानी, आकाश निभानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्यों ने गीत सुनना चाहा है। करनाल से हमारे श्रोता हैं सुधीर, संदीप और जग्गी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन ने गीत सुनना चाहा है। यवतमाल विदर्भ से संतोष खरसे और विनोद खरसे ने पत्र भेजा है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, तन्मय, अनिष्का, राधिका गजभिये ने गीत सुनना चाहा है। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरजीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं बादशाह फिल्म का ये गीत।

0: बादशाह फिल्म के इस गीत के साथ श्रोताओं आपकी पसंद कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। मीडिया में पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का निधन न केवल लोक कला जगत के लिए बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके गृहग्राम गनियारी में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग और आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज सुबह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस शिविर का कल शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझाव के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू की गई। शिविर में सुशासन, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। छत्तीसगढ़ को खरीफ सीजन के लिए 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीएपी उर्वरक आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त डीएपी मिलने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की समुचित उपलब्धता

सुनिश्चित हो गई है। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। राज्यपाल रमन डेका ने कहा है कि डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कल रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के सम्मान समारोह में युवा डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया तथा लोक भवन की ओर से मंडल को प्रदत्त एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश

0: गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए गए मीडिया वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 12 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल जले फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, आवाज़ें कुमार सानू और आदित्य नारायण की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल जले फिल्म का ये देशभक्ति गीत। आवाज़ें थी कुमार सानू और आदित्य नारायण की, बोल थे जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनिए जगजीत सिंह की गाई सरफरोश फिल्म की ये गज़ल। अल्फाज हैं निदा फाजली के, धुन जतिन ललित की।

0: शुदा अभी आप सुन रहे थे सरफरोश फिल्म की ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए मुस्कान फिल्म का ये गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, बोले समीर के, संगीत निर्देशन निखिल विनय का है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुस्कान फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत निखिल विनय का था।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए...

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिजा फिल्म की ये कव्वाली। आवाजें हैं AR रहमान, कादर गुलाम, मुर्तजा गुलाम मुस्तफ़ा की। धुन AR रहमान की है और अल्फाज हैं शौकत अली के।

फिजा फिल्म की इस गवाली के साथ शुदा हो आज मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग यहीं समाप्त होता है।

मीडिया में 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 12:30 होने को हैं। आप मन के गीत कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के राय

कार्यक्रम आप मन के गीत सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला पिंकी दुलानी के राम राम जय जोहार संगी हो। कार्यक्रम के शुरुआत करथन छाया शर्मा और साथी मन के गाए गीत ला जेला सुनवाए बर फरमाइश आप सब मन के हो। आप हो जेल रोड रायगढ़ ले उमा अरविंद जानवी निवेश परमिला रुचि प्रभा और अजीता ठाकुर राजकोट ले प्रकाश और परमिला शर्मा महादेव घाट ले कृष्णा कुमार वीना कुमार और डॉली जेल रोड मधुबनी ले फारेहा खान उमा खान और अनुश्री खान मगर लोट ले आप हो भागवत साहू और कुमारी बाई साहू भान बेड़ा मुंगवाले रूप नारायण हुपेंडी कमला चिमरी बाई हुपेंडी रानन गांव ले आप हो आत्मा राम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मनेश्वर साक्षी और तुलसी यादव डोंगर गांव रानन गांव ले आप कुबेर सिंह साहू सरस्वती साहू शेर सिंह और उर्मिला साहू बेमिता ले विशु और विभू साहू रानन गांव ले पारक राम किरण साहू रेशमा सोनू गुनीता साहू पालचुआ मुंगेली ले आप हो उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर रानन गांव ले झग्गा राम साहू बबलू जामुन देवी पूजा प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू लगान पंडरिया ले रुक्मणी बघेल उत्तम कुमार साहिल और भारती बघेल भिलाई नगर ले अशोक श्याम कुंवर परमिला श्याम कुंवर लोरमी गोल बाजार खपरी कला ले आप हो संतोष कुमार सोनी खिलेश निहाल पीहू दनिशा दीक्षा और संजय पूजा गंडई से आप प्रमोद पटेल शिवम कुमार अंकित कुमार कुमारी खुशी पटेल फाल्गुनी पटेल गिरी पलारी ले वीरेंद्र साहू आशीष कपिल साहू कटोरा तालाब ले आप हो मोहन लाल देवांगन प्रभा भूपेश तुषार औ बहुरानी भिलाईगढ़ ले आप हो दिनेश देवांगन भाग्यश्री पुष्कर औ वंशिका देवांगन आमाखोड़ा रेंगाखार ले राजेंद्र सिंह नेताम दक्ष प्रिया औ सरगम नेताम मेचका सोडूर ले गोमती ना पूर्णिमा मीनाक्षी ना पूर्णिमा महासमुंद ले बलराम सेन इंदू सेन छगन सिंह लक्षणपुर ले आप हो टेक राम यदु विकास यदु औ हेमलता आप मन के फरमाइश माँ आओ सुने जाए छाया शर्मा और साथी मन के गाए एक गीतला।

छाया शर्मा और साथी मन के गाए गीत के बाद आओ अब सुनथन सीमा कौशिक और साथी मन के गाए गीतला सुनवाई पर फरमाइश आप मन के आप हो रिंगली ले राकेश जाधव दिनेश जाधव परमिला जाधव बुलंदशहर ले संगीत कुमार वानी कुमारी और करुणा कुमारी दिल्ली ले आप हो रेशमा अंसारी परमिला सकीला और सईद अंसारी डूमरगांव बिहार ले अस्मा परवीन और वल्ली भाई अंसारी राजकोट ले हेमा यादव सुधा कुमारी और संध्या रिंगली ले सुखदेव फकीर चंद अजीत और फकीर चंद मुंबई ले आप हो अजीत मोंगा परमिला दुखना खटकीन और अहमद मोगा भीम खोज तरपों के लिए आप हो संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी और प्रतिभा गुप्ता नेहरूवाड भाटापारा ले

प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, जालंधर ले मीना कौर, नरेंद्र कौर, संदीप कौर और जेल रोड रिंगली ले अजीता पाल, पामेला और करुणा। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब ले आप हो राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, तनिष और तनिष और रजनी सेतिया। परभणी महाराष्ट्र ले रूपेश संघई, महेश संघई, प्रत्ये संघई। तखतपुर ले मिश्री लाल वर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी, विश्वकर्मा। चर डोंगरी पिपरिया ले आप हो दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, इंद्रानी और माया साहू। बाबा बट्टी बलिया ले ओम प्रकाश राय, उषा राय, हैप्पी राय। बेगूसराय बिहार ले दिनेश राय, अंशु कुमार और राहुल कुमार। लक्षणपुर ले विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू। मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। मुजफ्फरपुर बिहार ले आर्यन राज, हैप्पी आनंद। अंबागढ़ चौकी ले आप हो रिजवान खान, आयशा, सबिया और रेहान। भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू, करुण, राहुल और चंपा साहू। इंदौर मध्य प्रदेश ले आप हो नारायण खर्चे, ललिता, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, वंदना, स्वाति और प्रयाग चौधरी। चरडोंगरी पिपरिया ले आप हो दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन कुमारी, इंद्राणी माया साहू। लोरमी चंचेड़ी ले शंकर कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम और शिवम कोलाम। उड़ीसा ले आप हो नंद कुमार ठाकुर। ग्राम देहान बांधा बाजार रानंद गांव ले आप हो हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू, सरस्वती साहू और परमानंद साहू। तो आवो आप सबके फरमाइश में सुने जाए सीमा कौशिक और साथी मन के गाए गीतला।

सीमा कौशिक और साथी मन के गाए गीत के बाद अब अब सुनतन शांति यादव, इंदिरा चंद्राकर और रूप राम नारायण ध्रुव के गाए गीतला सुनवाए पर फरमाइश भेजे हो आप मन। आप हो बिस्तला जालबंधाले, ओम प्रकाश देवांगन, नोहरलाल देवांगन, रोहन सिले, डगेश्वर साहू, नूतन साहू, घनश्याम और गौरव साहू, कोदवाले आप हो श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, रानी रजनी मरावी, गांव ठोटरी घोटिया जिला मानपुर ले आपो महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल नैतिक, पुष्पांजलि और स्वप्निल, आदिपुर अजार कच्छर कच्छ ले आपो जगदीश सोनार, प्रवीण पुजारी और प्रतिमा देवी, ग्रीन चौक मुरबी ले कंचन कुसुम और सरोज श्रीमाली, आवरा डबरी ले सामलाल साहू, मोगरा साहू, केसरी प्रीति, संगीता साहू, भाटापारा ले सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, धनेश तिवारी, सावन नायक, भाटापारा ले आपो अनिता साहू, वीना साहू, नेहा और मोनिशा साहू, महादेव घाट अमलेश्वर ले मिथिलेश ठाकुर, तारिणी और ज्योति ठाकुर, सौगा मगर लोले कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, बुड़गहन ले आपो राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, रिंगनीले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, अमलेश्वर दुर्ग ले आपो डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, रियांश और गुड़िया ठाकुर, गरियाबंदी लालचंद और यशवंत, दोहा कतर ले आपो शेख जियाउर रहमान, दतरंगी ले आपो भागवत वर्मा और गुलाब दास, सावतपुर ले ऋषि सेन, रितेश सेन, सनावत मध्य प्रदेश ले आप दिलीप मालाकार, योगेश शेख मूसा और अशोक वर्मा, आर्यनगर कोका बिलाई ले उत्तम सिंह जंगेल, मोरत जंगेल, दनिया खुर्द कवर्धा ले आपो गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत और भाटापारा ले बचकमल, मोतीलाल विनय ठाकुर और बसंत भृगु। तो आओ संगी हो आप सबके फरमाइश में सुनथन शांति यादव, इंदिरा चंद्राकर और राम नारायण ध्रुव के गाए गीतला।

कार्यक्रममा आओ अब सुन्थन धुरवाराम मरकाम औ दुखिया बाई के गाए गीतला सुनवाए बर फरमाइस आप मन के है आप हो कोर्दा लवनले भूधर प्रसाद वर्मा घनश्याम प्रसाद वर्मा गुलशन कुमार शिव कुमारी वर्मा हेमलता औ वेद किरण वर्मा पोटिया कला दुर्गले संजय साहू सुजाता साहू ससांग औ सीमा साहू बाजार पारा बेमित्राले भरत लाल सिन्हा लव कुमार सिन्हा लक्की सिन्हा करी बदलले आपो पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा गिनी औ देवेंद्र कुमार महामाया पारा ग्राम दरचूरा ले आपो फिरंता साहू दुलोरिन साहू कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू शिक्षण नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा बेरला हतपानले रतनलाल यादव शांतिबाई और अजय कुमार यादव कोटा ले आपो अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन भिलाई ले आपो निर्मल सिंह चूड़ी लाइन भाटापारा ले आपो अब्दुल मजीद कुरैसी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पलारी ले आप हो प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा प्रिंस और यशस्वी वर्मा रामचंद माखीजा शंकरलाल माखीजा राहुल कुमार माखीजा सविता माखीजा स्वाति माखीजा आप मन हो धमदरी ले शंकर नगर दुर्गले मानिक सिंह बैस कावेरी राहुल बैस विनीता लेखमणि बैस शीतला नगर दुर्गले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर कोरदा ले कलीराम यादव छतराम यादव खैरागढ़ ले रविंद्र अग्रवाल पुष्पलता झरना प्रेरणा दीक्षा और शिक्षा और महासमुंद ले आपो सुभाष शर्मा छाया शर्मा भीषम दास मानिकपुरी और गोवर्धन यादव तो आओ आप सबके फरमाइश माँ सुनथन धुरवाराम मरकाम और दुखिया बाई के गाय एक गीतला

संगी हो कार्यक्रम के आखिरी गीत भर स्वर दे है पिल्लू राम गंधर औ साथी मन औ फरमाई से हमारे श्रोता मन के आप हो नवागढ़ कटेले आप हो जीवनलाल देवांगन कचरीबाई देवांगन दीपक देवांगन हरदेवार पारा वार्ड चिमका ले आप हो रमेश कुमार यादव माया रिंकू सनी और कोमल यादव बंगला मटिया बालो ले आप हो शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रैंबिका लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे भाटापारा ले मिलव दास कुलदीप संतोष संदीप और अजीत हथनी पारा भाटापारा ले चोवाराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा और दुर्गेश्वरी वर्मा डंगनिया पाटन ले सूर्या मेघा कश्यप नर्मदा धाम सुरसुरी ले आप हो कैलाश यादव सुरेश यादव टिकेंद्र यादव योगेश यादव धवलपुर गरियाबंद ले आप हो गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति धनंजय और अर्चना मिश्रा बाजार पार वाडा बाजार वार्ड महासमुंद ले आप हो भीखम दास मानिकपुरी नर्मदा मानिकपुरी लक्ष्य दीपक दास मानिकपुरी मेचका नगरी ले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा नाग निखिल नाग और तरुणदीप नाग कांडे मोला ले आप हो रूप सिंह साहू और शैलेंद्र साहू। तो आओ आप सबके फरमाइश में सुनतन पिल्लू राम गंधर्व और साथी मन के गाय एक हितला।

पिल्लू राम गंधर और साथी मन के गाय गीत संग अब होत है कार्यक्रम ले विदाले के बेरा जाए के पहले आप मल्ला बता देवन एक कार्यक्रम मा गीत ला जोड़े रहीन वीर भान साहू तो अब देवो विदा और स्वीकारो पिंकी दुलानी की जय जोहार।

आप मन के गीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र

0: केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय है बरबटी की खेती, करे लाभ कमाएं।
1: किसान भाइयों, फलीदार सब्जियों में बरबट्टी का एक प्रमुख स्थान है। इसका प्रयोग दाल और हरी फलियों की सब्जी के रूप में किया जाता है। इसकी पत्तियां पत्तेदार सब्जी और हरे चारे के रूप में उपयोग होता है। यह प्रोटीन मुख्यतः एमिनो एसिड का अच्छा स्रोत है। इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। बरबट्टी की कुछ किस्में जो हमारे अंचल के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें लोबिया गोमती, इसकी अवधि 50 दिन, उत्पादन क्षमता 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके पौधे झाड़ीदार होते हैं। यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील है, अतः गर्मी व बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त किस्म है। फलियां हल्के रंग की 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। दाने बड़े आकार व लाल रंग के नाभिकीय होते हैं। पूसा बरसाती, इसकी समय अवधि 45 दिन होती है। उत्पादन क्षमता 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त है। इसकी फलियां हरे रंग की 26 से 28 सेंटीमीटर लंबी व दाने बड़े हरे रंग के होते हैं। उसी तरह एक किस्म है पूसा कोमल, इसकी समय अवधि 60 दिन की होती है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके पौधे झाड़ीदार होते हैं। यह गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। फलियां हल्के रंग के कम रेशे वाले 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह किस्म जीवाणु मलानी रोग के प्रतिरोधक है। दाने क्रीम रंग के होते हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी के लिए खेत की तैयारी की यदि बात करें तो खेत की एक गहरी जुताई कर 2-3 बखर चलाकर मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना लें। अलग अलग किस्मों के लिए बीज दर अलग अलग अनुशंसित है। जैसे झाड़ी नुमा के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आधा चढ़ने वाले 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चढ़ने वाले में 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दाने व सब्जी दोनों प्रकार के किस्मों के लिए छिड़काव विधि में 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व एक बोने वाली किस्मों के लिए 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नर्सरी का निर्माण की बात करें या रोपण दूरी की बात करें तो सबसे पहले झाड़ी नुमा किस्मों के बीजों को 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढे में 1-2 बीज बोएं। अर्ध चढ़ने वाली किस्मों में 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखें। चढ़ने वाली किस्मों में 45 से 60 सेंटीमीटर व्यास, 30 से 45 सेंटीमीटर गहरे व 2×2 मीटर की दूरी पर प्रति गड्ढे में 3 पौध होना चाहिए। वर्षा ऋतु में बीजों को 90 सेंटीमीटर की ऊंची भूमि पर लगाना चाहिए। अधिकतर क्षेत्रों में बरबट्टी की बुआई गर्मी व वर्षा ऋतु में की जाती है। खरीफ मौसम में जून जुलाई में बोया जाता है व अगेती किस्मों को अगस्त सितंबर में बोया जाता है। अभी गर्मी के मौसम में फरवरी मार्च में बोना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल मई में भी बुआई कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन की यदि बात करें तो 1-2 बार गुड़ाई करना चाहिए, जिसे नींदा का नियंत्रण होता है व जड़ों को हवा मिलती है। बुआई के बाद 25 से 30 दिन तक निंदाई गुड़ाई आवश्यक है। खेत में फ्लूक्लोरालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। एला क्लोर या नाइट्रोफेन का छिड़काव 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। स्टाम्प 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव 30 दिनों तक निंदा नियंत्रण करें। चढ़ने वाली किस्मों में बांस की बल्ली या जूट प्लास्टिक वायर से सहारा देना चाहिए। जब पौधों में बेल आने लगे तब लकड़ी का सहारा देना चाहिए। उर्वरक के साथ हल्की मिट्टी चढ़ाने से फसल अच्छी होती है। अत्यधिक पत्तियों को तोड़कर अलग कर देना चाहिए, जिससे फूल व फल अच्छी तरह से लग सकें। बरबट्टी पानी के जमाव के प्रति संवेदनशील है एवं इसे अन्य सब्जियों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। दाने वाले किस्मों को 2 या 3 सिंचाई फूल एवं फल्ली बनते समय देना चाहिए। सब्जी वाली किस्मों को 4 से 5 दिन के अंतराल से फूल लगते समय सिंचाई करना चाहिए। फूल लगने के पहले सिंचाई रोक देनी चाहिए। उर्वरक की उपलब्धता के आधार पर 15 से 20 टन गोबर की खाद की मात्रा खेत की तैयारी के समय भूमि में अच्छी तरह मिला दें। बरबट्टी को नत्रजन की आवश्यकता कम होती है। खेत की तैयारी के समय 150 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा को खेत तैयारी के समय देना चाहिए। अगर बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया गया हो तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की 100 किलोग्राम डालें। जिंक की कमी वाले खेत में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट डालना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों बरबट्टी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय था बरबट्टी की खेती करें लाभ कमाएं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:10 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घरांगन कार्यक्रम में आज आप सभी का दिल से स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार, आज चंदा की ओर से। श्रोताओं, हम सभी को प्रकृति से असीम प्यार होता है और प्रकृति यानी कि साफ स्वच्छ वातावरण, हरियाली, कल कल बहती नदियाँ, पक्षियों और जीव जंतुओं की वही चिर परिचित आवाजें, कितना मधुर है ना ये सब। सचमुच इन सभी के बीच यदि गहरा तालमेल और अच्छा संतुलन बना रहे तो वाकई हमारा जीवन, हमारा पर्यावरण स्वस्थ और खुशहाल बना रहेगा। और देखिए, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इन दिनों यानी जुलाई के पहले सप्ताह में हम मना रहे हैं वन महोत्सव 2026 भी, जिसका उद्देश्य हमें प्रकृति से जोड़ना है। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उनकी उतने ही गहनता से उनका संरक्षण भी करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो सचमुच हम प्रकृति का संतुलन बनाए रख सकते हैं और ऐसे में हमारे वन्य जीवों की शोभा भी बढ़ी रहेगी और हमारा जो यादगार पर्यटन होगा, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जीव जंतुओं को देखने जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक यादगार तोहफा ही लगेगा। इसलिए याद रखें, हरियाली की शान है वन, जीवन का आधार है वन, वन्य जीव है इसकी धड़कन, प्रकृति का श्रृंगार। आओ मिलकर प्रण करें, इनका मान बढ़ाएंगे, वन और वन्य जीव बचाकर सुंदर कल बनाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ अब सुनते हैं एक अच्छा सा गीत।

0: नहीं गईं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने पंडवानी लोक गाथा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। वे महाभारत की कथाओं को अपनी दमदार आवाज, एकतारा और भावपूर्ण अभिनय से जीवंत कर देती थी। तीजन बाई को पंडवानी की कपालिक शैली में महारत हासिल थी। आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। आज आकाशवाणी अंबिकापुर की तरफ से आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब समय है सखियों आपके चहेते फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया है। देखिए, तीजन बाई एक ऐसा नाम है छत्तीसगढ़ में, एक ऐसी विभूति हैं जो कभी स्कूल

0: नमस्कार श्रोताओं, घर आंगन के फोन इन कार्यक्रम बात करेंगे सुने में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए ना, बरसात का ये सुहाना मौसम हर किसी को लुभा रहा है। इन दिनों बारिश का यह मौसम अपने साथ नई उमंगे और नई ताजगी लेकर आया है, तो आइए हम भी इस ताजगी में सराबोर हो जाएं और नई सोच नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और आपसे बातों के लिए फोन इन कार्यक्रम से अच्छा मंच भला और क्या होगा, तो आइए जुड़ जाइए इस खूबसूरत आंगन में अपनी घर आंगन सखी चंदा के साथ। नमस्कार, और आइए अब शुरू करते हैं बातों का सिलसिला इस पहले फोन के साथ। हेलो
1: हेलो, बहुत दिन से ट्राई कर रही।
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले अपने बारे में, ये क्या नाम है?
1: हाँ मैडम, मैं यही अंबिकापुर रूबी भवाल बोल रही हूँ।
0: स्वागत है आपका, आपसे मेरी हाँ। पहले भी बातचीत हुई है।
1: जानते मैडम, अभी तो हमारा फूल इतना अच्छा खिल रहा था, अभी बारिश भी चालू हो गया है, तो मेरा कभी घटा नहीं मैडम। इतना बड़ा बरसात, गर्मी में भी फूल नहीं घटा। और अभी जुलाई महीना में मेरा मम्मी का जो था वो वर्षगांठ था। हमारा भाई बहुत बड़ा प्लांट में सबके लिए एक एक वृक्ष रोपण सब माँ के नाम से लगाते हैं जी।
0: और आपने चर्चा की है कि भाई आप लोग पेड़ लगाते हैं, है ना? तो बहुत अच्छी आपकी पहल है ये।
1: सुनिए, अभी आएंगे ना तो जल्दी आइएगा। मेरा पेड़ मतलब पाइनएप्पल अभी भी दो ठो है, तो अभी आएंगे तो आपको पाइनएप्पल भी मिल जाएगा। नाशपाती फला है, हैं, अभी ठीक से पका नहीं है लेकिन खाने लायक एक आध ठो मिल जाएगा। तो बाकी तो आएंगे तो आपको मैं फूल का गुलदस्ता बना के, दो दिन के बाद में फोन लग गया तो मैं फिर खुश हो गई हूँ। इतना दिन से मैं गुस्सा जा रही थी, मैं प्रोग्राम नहीं सुनूंगी, इतना मेरा फोन नहीं लगता।
0: नहीं नहीं, इतनी जल्दी नाराजगी मत जताइए, ठीक है? हमारा साथ बहुत लंबा है, ठीक। तो ये बता दूं मैं आपको कि देखिए, जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है ना, वो वन महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है।
1: ये वन महोत्सव में प्लांट लगाने चाहिए मैडम। कैसे भी देखिए, मैं आज तकलीफ में हूँ, फिर भी मैं बोली कि एक जुलाई को एक पौधा लगाना ही है, तो मैं कुछ नहीं फल का ही पेड़ लगाई हूँ, केला वृक्ष लगाई हूँ, फल देगा।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात। और आपसे बातचीत के दौरान आपने हमेशा ही बताया है कि आप प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन एक हम आपसे अनुरोध ये भी करेंगे कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी, जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, उनको भी पेड़ लगाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित करें।
1: मैं जब आई थी ना, यहाँ कुछ भी नहीं था, सबके घर में कोई आदमी नहीं दिखता था मैडम, आप विश्वास नहीं करेंगे। एकदम सुनसान इलाके में मैं आई थी, इसके बाद में ऐसा जमीन था मैडम, कोड़ काड़ के उसको मैं ऐसा जमीन बना दी हूँ। इसके बाद में अपना फ्लावर डेकोरेशन सब करती हूँ, और इसके बाद में मेरा ही देखा देखी, अभी देखिए जाके गाँव में ही बहुत लोग अपने घर में फूल लगाए हैं।
0: चलिए, तो अच्छी बात है ना, आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, है ना?
1: और विश्वास नहीं करेंगे मैडम, मैं अकेला जान बताइए, मेरे पास एक गाय से मेरे पास 8-10 ठो गाय हो गया था। मैं दूध बेचती थी, अपना घी बेचती थी। अभी मेरा बीमारी की वजह से गाय गरु सब दान कर दिए हैं, अब अपने पास कुछ नहीं है। मैंने 8-10 ठो मुर्गी है, बस वही मुर्गी है मेरे पास, अब कुछ नहीं।
0: अच्छा, चलिए, इतना बड़ा बगीचा आपके पास है, प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार आपके ही पास है, तो आप उसकी सेवा कीजिए।
1: जी आएंगे तो आपको सब कुछ देखने भी मिलेगा।
0: जी हम जरूर आएंगे रूबी जी। और एक बात ये भी हमको आपसे कहनी थी कि जिस तरह से आप बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने बाग बगीचों की देखभाल कर रही है ना, वैसे जीवन में भी सकारात्मक बने रही, है ना?
1: हाँ।
0: और बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम, भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, ठीक है?

0: और मेरा पसंद का एक तो गाना लगा दीजिए।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गीत।
0: गुनगुना रही है भावरे खिल रहे कली कली कली कली कली, ऐसा वाला।
1: ठीक है, बहुत अच्छा सा गीत हम सुनवाएंगे। ये फिल्म आराधना का गीत।

0: हेलो जी दीदी, नमस्ते।
1: नमस्ते, पहले अपना परिचय दे दीजिए।
0: चंदा दीदी, मैं सरिता गुप्ता बोल रही हूँ, ग्राम पड़ोली से।
1: सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जान के मुझे और अच्छा लग रहा है कि आप मेरी आवाज़ पहचान गई है ना।
0: मैं बहुत खुश हुई कि आपसे बात करने को मिला है, मैं सोची भी नहीं थी।
1: अच्छा, तो क्या कर रही हैं फिलहाल?
0: बस कुछ नहीं, बस घर में हूँ।
1: क्या करती हैं वैसे सरिता आप?
0: मैं तो कॉलेज कर रही हूँ दीदी।
1: किस क्लास में हैं अभी?
0: अभी तो मेरा सेकंड ईयर है।
1: आगे क्या
0: तो
1: सपना है?
0: वही मैं क्या बोलते हैं, टीचर बनना चाहती हूँ। कॉलेज कर रही हूँ तो घर में थी, तो मैं सोची आज लगाऊं।
1: आप बता रही हैं आप टीचर बनना चाह रहे हैं। आप कुछ पुराने यादों में खो जाइए और हमें बताइए आप अपने किस शिक्षक को बहुत याद।
0: मैं तो मेरे लिए तो सभी शिक्षक मेरे लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे

0: विश करती हूँ, ये आनंदिनी मैडम थी, पुष्पा मैडम थी, उनको बहुत विश करती हूँ। वो लोग ना एकदम दोस्त टाइप से रहते थे, सर थे, तो कुछ खट्टी मीठी यादें हैं और बच्चे लोग के साथ बड़ा मजा आता था। स्कूल का एक अपना लाइफ अलग ही होता है दीदी, इतना मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं तो हर किसी से यही कहूँगी कि हर कोई घर में ना रहे, पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे ना तो देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और हमारे देश के लिए भी, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों से काम कराते हैं, उनसे मेरा दिल से आग्रह है कि वो अपने बच्चों को काम न करा पढ़ाई करने भेजे स्कूल। उनसे देखेंगे कि हाँ उनका भविष्य कितना आगे उज्ज्वल होता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, एक तो बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं और ऊपर से माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं, बस काम में लगा देते हैं बच्चियों को, खासकर लड़कियों को, तो ये गलत।
1: जी जी बिल्कुल। और देखिए, स्कूल जाने की बात हो रही है बच्चों की, तो ये जो समय है ना जुलाई का, ये बेहद जरूरी समय है उन लोगों के लिए, क्योंकि इस समय एक तो स्कूल शुरू हो गए हैं और इसी समय मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। तो आपके क्षेत्र में कैसा उत्साह है इसको लेकर?
0: हमारे क्षेत्र में तो जगह जगह बस अच्छे से मना रहे हैं दीदी, और कहना चाहिए कि बच्चे लोग को तो वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं कि स्कूल जाए, और जो मिठाई उठाई बांटते हैं वो तो खैर दे ही रहे हैं, बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस दिल से ही मैं आग्रह करूंगी सभी बच्चों, आजकल के ना बच्चे भी पढ़ाई नहीं करना था, उनको माँ बाप अगर बोलते भी है जाने के लिए तो बच्चे नहीं जाते।
1: जी जी, लेकिन सरिता देखिए, बच्चे नाजुक है ना, बच्चे छोटे हैं, भोला मन है उनका, तो ऐसे में हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है ना कि हम उनको समझाएं है? और प्यार से समझाएं, तभी बच्चे जो है वो शिक्षा के लिए उत्सुक हो पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर, और आपने आज के इस फोन इन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कौन सा गीत आज आपकी पसंद होगी?
0: दीदी मेरे को सुनना था वो सावन आया बादल छाए करके गाना, नहीं है? हाँ वही गाना।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि अगली बार भी हमारे साथ होंगी आप।
0: जी दीदी, आपसे भी बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा।

0: सरिता जी की पसंद के इस प्यारे से गीत के बाद आइए जुड़ते हैं अगली श्रोता बहन से और जानते हैं उनके विचार।
1: मैं जयवंत केवड़ बोल रही हूँ, अनूपपुर मध्य प्रदेश से।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आप समय देखकर नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम से जुड़ती हैं, बहुत बहुत आभार इसके लिए सबसे पहले तो। और ये बताइए अभी क्या कर रही
1: हैं? बारिश शुरू हो गई, वो भी एक हमारी खुशकिस्मत है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, एक दिन हुई और होके थम गई थी, आज 3 दिन में फिर से शुरू हो रही है।
0: तो अच्छा लगता है आपको बारिश का समय?
1: बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी खेती अभी पिछड़ी हुई है, तो हम सोच ही रहे थे कि एक तो बारिश हो जाए, एक तो फिर धूप कर दे, ऐसे लग रहा था हमको। देखिए ना, हम आपको फोन लगाए हैं और कितना अच्छा मौसम बन गया है। आप देख रहे हैं आपके अम्बिकापुर बिलासपुर तरफ पूरे बादल छाए हुए हैं।
0: जी जी, देखिए बारिश का मौसम हर किसी को लुभा रहा है इन दिनों, है ना। लेकिन साथ ही साथ इन खुशियों के बीच बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर पर पीने के पानी का।
1: जी।
0: तो क्या कहेंगी इस बारे में?
1: पीने के पानी का उपयोग करने से पहले तो हमें उसे उबालना चाहिए और क्लोरीन गोली डाल के ही उपयोग करना चाहिए। क्या है कि जैसे नया पानी होता है तो उसमें थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाते हैं और वो पानी अक्सर नुकसान कर।
0: जी बिल्कुल। और यदि आप जैसे सप्लाई वाला पानी ले रही हैं नगर निगम से या ग्राम पंचायत का, जो भी सप्लाई वाला पानी है, कई बार ऐसा होता है कि पाइपों में रिसाव के कारण भी पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान तो रखना ही होगा।
1: जी,
0: और बताइए पीने के पानी के अलावा भी, बारिश का समय है, हमें इसका संग्रहण भी करना है।
1: पानी के अलावा तो जल संरक्षण के बारे में अब मैं क्या कहूँ, सभी आए जल संरक्षण करें, खेत का पानी खेत में, तालाब का पानी तालाब में, और हमारे घर अगल बगल जो भी पानी इधर उधर बहते हैं ना, उन्हें सोखता गड्ढा दें, सोखता पिट बनाकर और जमीन में ही मतलब सोखे ऐसे व्यवस्था बनाए।
0: जी जरूर, इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से जयवंत्री जी हम भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं, है ना। अच्छे विचार आपके। मैं अपने श्रोता बहनों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि भाई बारिश का समय है, तो ऐसे में घर के आसपास या फिर गमलों में या फिर कूलर वगैरह में अनावश्यक रूप से पानी जमा ना होने दें, क्योंकि बारिश का समय यानी मच्छरों का समय भी है ये।
1: गड्ढे रहते हैं और जैसे टायर वगैरह तो ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ भी प्लास्टिक के चीज रहते हैं उसमें पानी भरे रहते हैं, तो उसमें मच्छर अपने आप पनप जाते हैं। इससे सुरक्षा के लिए ऐसा सामान अपने घर के आसपास नहीं रखना चाहिए।
0: जी जी, तो जरूर इन सभी बातों का ध्यान रखें आप सभी भी। बहुत अच्छी बातचीत के लिए जयवंत्री जी आपका फिर से एक बार धन्यवाद कहते हैं हम। और आपको विदा करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपके पसंद का गीत।
1: इसी उसमें सुना दीजिए, नदिया चले चले रे धारा, तुझे चलना होगा।
0: जरूर हम सुनवाएंगे, है ना, आपको आपकी पसंद पर बारिश का ही एक गीत। और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, रिमझिम फुहारों ने धरती को हरियाली की सुंदर चादर उड़ा दी है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को एक नई ताजगी से भर देती है। ऐसे ही खुशनुमा मौसम में आपसे हुई हमारी ये खास बातचीत, हमने सुने आपके अनुभव। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए घर आंगन के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। और हमसे जुड़ने के लिए आपको करना होगा कॉल। रिकॉर्डिंग का समय होता है सुबह 10:30 से 11 के बीच और दिन है शनिवार को। इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करते हैं रविवार को घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत, और कार्यक्रम का नाम फोन इन बात करें गीत सुने। तो इसमें फोन लगाने के लिए आप याद रखिए हमारा नंबर है 231-917 और दूसरा नंबर है 231-918। यदि आप अंबिकापुर से बाहर रहती हैं और हमसे बातें करना चाहती हैं, तो आप इन दोनों नंबरों के पहले हमारे अंबिकापुर शहर का कोड नंबर 07774 जरूर। फिर होगी अगली बार कुछ नई बातें, कुछ नए गीत फोन इन में। आज बस यहीं तक, और फोन इन के साथ ही सखियों आज स्टूडियो से भी मुझे अब विदा दीजिए। आप

0: सभी को चंदा का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, मीडिया वेव और FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए ईमेल की गूंज कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तीसरी कसम का ये गीत। आवाज़ थी आशा भोसले की, बोल थे शैलेंद्र के, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था। इस गीत को सुनना चाहा था देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभानी, संगीता आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य। प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगढ़ जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल भेजा प्रेम साय रजवाड़े, सुमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार राम, खेलावा सिंह पैकरा ने। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ईमेल आया लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। राजकोट से फरमाइश करता थे पूजा पायल। प्रवीण सोनी कच्छ भुज से जगदीश जौहरी ने ईमेल के जरिए गीत सुनना चाहा था। नसीब रेडियो श्रोता संघ नांगचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारे श्रोता अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने ईमेल भेजा था। श्रोताओं, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत, पुष्पांजलि वर्मा ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से ईमेल आया है सुपान ताड़े, वसंत राव, पी एस गवहांकर का। जोड़ा पीपल अंबिकापुर से ईमेल भेजा है स्वरूप आनंद सरजाल ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने गीत सुनना चाहा है। आकोट से विनायक, मंगला और शुभम ने ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं दो बदन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत निर्देशन रवि का है और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

अभी आप सुन रहे थे दो बदन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। अकोला से हमारे श्रोता हैं सुयश रॉय, अलका रॉय दरियापुर भावली से। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले ने गीत सुनना चाहा है। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी और जोई ने गीत सुनना चाहा है। जलालाबाद वेस्ट से ईमेल आया है सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा प्रिया दशानी का। महाराष्ट्र से ईमेल आया है श्रीकृष्ण और संदीप बाठे का, रघुवीर नगर नई दिल्ली से गीत सुनना चाहा है श्रुति और किरण ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ईमेल भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह ने। देवरी भाटापारा से हमारे श्रोता हैं के आर साहू, आकाश गमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं संगीत फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल की, बोल हैं संतोष आनंद के, संगीत आनंद मिलिंद का है।

अभी आप सुन रहे थे संगीत फिल्म का एक गीत, आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना ने गीत सुनना चाहा है। चंडीगढ़ से ईमेल आया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल और पुष्पा ताई नारे ने ईमेल भेजा है। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी ने ईमेल भेजा है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने गीत सुनना चाहा है। रायगढ़ से ईमेल आया है रोहित जय लक्ष्मी का। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम ने ईमेल भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं आशिकी फिल्म का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में। बोल समीर के संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में। संगीत निर्देशन नदीम शर्मा का था, बोल थे समीर के। कार्यक्रम में अंतिम गीत के लिए हमें ईमेल आया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह और कुशल शाह का। छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता ने ईमेल भेजा है। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी ने गीत सुनना चाहा है। छत्तीसगढ़ पथरिया भरिवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल ने गीत सुनना चाहा है। तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा ये हमारे श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुरारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति ने गीत सुनना चाहा है। डोंगर गांव से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने गीत सुनना चाहा है। बेड़ी मध्य प्रदेश से ईमेल करता है हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची तनु और परिवार के सभी सदस्य। महाराष्ट्र से रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले ने ईमेल भेजा है। अलार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा ने ईमेल भेजा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पाल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो ने गीत सुनना चाहा है। इंदिरा नगर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम राजा ने ईमेल भेजा है। बेताब रेडियो लिसनर क्लब पटना बिहार से ईमेल आया है वसीम अकरम, सालिहा खातून और गुड़िया खातून का। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर साय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी और सोनू सिंह मरावी का ईमेल आया है। पुराना तालाब डुमराव से हमारे श्रोता हैं वलीउल्ला अंसारी, सुल्तान अंसारी और आसमान आज अंसारी। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी ने ईमेल भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दीवाना से। गीतकार हैं समीर, संगीत नदीम श्रवण का है।

0: कुमार सानू और साधना सरगम के गाए फिल्म दीवाना के इस गीत के साथ श्रोताओं आज ईमेल की गूंज कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: शुमार कर
0: मीडिया वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार

0: आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में

0: कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। सज्जन भाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला

0: ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गऊ, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोपहर समाचार का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। मीडिया में वो 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई ये गजल। रचना थी कातिल राजस्थानी की। श्रोताओं, आप लुत्फ उठा रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा का। कार्यक्रम में आप सुनिए अदनान सामी का गाया ये एल्बम गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अदनान समी की आवाज़ में ये एल्बम की गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा का आप लुत्फ उठा रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की गाई ये गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गज़ल। रचना थी बासु चक्रवर्ती की। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई ये गज़ल, रचना इब्राहिम अश्क की है।

श्रोता भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का समापन आज यहीं होता है। मीडिया में वो 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सभा समाप्त करने से पहले आइए हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, हमारी सांधिकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोंठ के साथ। 5:05 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण करेंगे 5:30 पर। 6:05 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण। 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। 6:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम कानून की बात। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे शाम 7 बजे विश्व विख्यात पंडवानी गायिका विदुषी तिजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी कला साधना और लोक कला के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय योगदान पर श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम विदुषी तिजन बाई एक स्मृति शेष। श्रोताओं, रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। यह दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सुनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, खड़गवां, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर, राजपुर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही,

भगवानपुर, नवापारा, बिशुनपुर, आबादी, सिलाजू, आनंदपुर, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दांतीढाब, बाबा पहाड़, बर्डाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटापानी, श्रीटोली, मयूरचुंदी, बोडालता, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, कुदराझरिया, साजापानी, सोनारपहरी, बढ़नीझरिया, सोनगेरसा, बीजाघाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल

0: कुमारगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल की कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटा पानी, श्रीटोली, मयूर चूंदी, बोडालता, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर, उदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, बर्नी झरिया, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल, धरमजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 111 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सहिया भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओर, ताराझर, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ में मन थक जाता है, तब प्रभु का स्मरण ही हमें नई शक्ति, नया विश्वास और नई दिशा देता है। ईश्वर की कृपा ही वो प्रकाश है जो अंधेरों में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में ये भक्ति गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म नील कमल से। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत रवि शंकर शर्मा का था। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और कुणाल काजावाला की आवाज़ में फिल्म साया का ये गीत। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीत अनु मलिका है।

श्रोताओं, भक्ति वो दीपक है जो बाहर नहीं भीतर भी उजाला करता है। जब मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं। आइए भक्ति की इसी ज्योति को आगे बढ़ाते हैं।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम में प्रस्तुत है गोपाल शर्मा और सुखदेव शर्मा के स्वर में ये भजन।

जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रभु पर अटूट विश्वास हमें हर मुश्किल हर कठिनाई से पार लगाता है। आइए सुनते हैं अब ये अगली भक्तिमय प्रस्तुति।

अभी आप सुरेश वाडकर के स्वर में ये भक्तिमय भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम भजन संध्या के आखिर में लीजिए सुनिए कविता पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत।

कविता पौडवाल के गाइस भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम भजन संध्या अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं रागिनी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। अगर आपको ज़िंदगी हर सुबह 86,400 रुपये दे और कहे कि इन्हें आज ही खर्च करना है, कल ये आपसे वापस ले लिए जाएंगे, तो क्या आप एक भी रुपये बेकार जाने देंगे? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर सुबह हमें 86,400 सेकंड भी मिलते हैं? फ़र्क सिर्फ इतना है कि पैसों की कीमत हम जानते हैं, लेकिन समय की कीमत अक्सर भूल जाते हैं। यही वजह है कि हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, एक नया अवसर भी जन्म लेता है। किसी के लिए नया सपना, किसी के लिए नई शुरुआत और किसी के लिए खुद को फिर से साबित करने का मौका। दोस्तों, कभी गौर किया है कि सूरज कभी ये नहीं सोचता कि कल बादल थे इसीलिए आज नहीं निकलूँगा। नदी कभी ये नहीं कहती कि कल रास्ता मुश्किल था इसीलिए आज नहीं बहूँगी। तो फिर हम इंसान बीते हुए कल को पकड़कर क्यों बैठे रहते हैं? अगर कल कोई गलती हुई, अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो यकीन मानिए आज की सुबह कह रही है, फिर से कोशिश करो, इस बार शायद किस्मत भी तुम्हारे साथ चल पड़े। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा राज कोई जादू नहीं, वो है हर सुबह उठकर अपने सपनों की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाना। याद रखिए, पहाड़ पर चलने वाला इंसान एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता। वो रोज़ एक कदम बढ़ाता है और वही छोटे छोटे कदम एक दिन मंजिल बन जाते हैं। इसीलिए अगर आज आपका मन कहे यार छोड़ो, नहीं होगा, तो अपने मन से बस

इतना कहिए, अभी नहीं हुआ लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि हारने वाले वो नहीं होते जो गिर जाते हैं, हारने वाले वो होते हैं जो अगली सुबह उठना छोड़ देते हैं। और दोस्तों, हर सुबह आईने में खुद को देखकर एक बात ज़रूर कहिए, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, किसी और से नहीं बस अपने ही पुराने रूप से आगे निकलना है। हर सुबह उम्मीदों की चिट्ठी लेकर आती है, हर किरण नई जिंदगी का पता बताती है, बीते कल की धूल झाड़ कर आगे बढ़ जाना, जिंदगी हर रोज नई कहानी लिखवाती है। तो दोस्तों, सुबह सिर्फ अलार्म से नहीं एक नए इरादे से शुरू कीजिए, क्या पता जिस मौके का इंतज़ार आप महीनों से कर रहे हों वो आपकी अगली सुबह आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो इसी उम्मीद और मुस्कान के साथ आइए सुनते हैं रमन महादेवन की आवाज़ में फिल्म तारे ज़मीं पर से ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कहते हैं हवा कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका एहसास जिंदगी के हर पल में होता है। कभी ठंडी हवा सुकून दे जाती है, कभी तेज़ हवा हौसलों को उड़ान दे जाती है, तो कभी यही हवा अपने साथ ढेर सारी यादें और अनकही बातें भी ले आती हैं। तो दोस्तों आज युवा पसंद में हम बात करेंगे हवा की और सुनेंगे कुछ शानदार गीत जिनमें हवा की तरह ताजगी, मस्ती और प्यार की खुशबू बसी है। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म मुबारका के इस खूबसूरत के गीत के साथ, जिसमें आवाज़ है मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुबारका का ये गीत, और इस गीत की फरमाइश की थी सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन पैकरा ने। करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्बार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन अंसारी ने। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हवा के बारे में। हवा हमें एक खूबसूरत सीख भी देती है, वह कभी रुकती नहीं, हर पल आगे बढ़ती रहती है। शायद इसीलिए हमें भी ज़िंदगी में ठहराव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब वक्त है अगले खूबसूरत गीत की, तो आइए सुनते हैं वसुंधरा दास और केके की आवाज़ में फिल्म मैं हूं ना से ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म मैं हूं ना का ये गीत, और इस गीत की फरमाइश भेजी थी कोदवा साजा से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता और एचडी गुप्ता ने। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। चर डोंगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू ने। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा ने। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हवा के बारे में। कभी आपने महसूस किया है कि जब मन खुश होता है तो हल्की सी हवा भी किसी अपने के स्पर्श जैसी लगने लगती है, और जब मन उदास हो तो वही हवा कई यादों को अपने साथ ले आती है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सीता और गीता से ये अगला गीत।

0: रेशमी जुल्फे लहराने दे। ला ला ला।
1: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म सीता और गीता से ये गीत, और इस गीत की फरमाइश की थी ग्राम बेरा बेमित्रा से प्रहलाद सिंह वर्मा, मालती वर्मा, विनी और अनी वर्मा ने, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने, बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, काफिर भाई और सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा ने। दोस्तों जिंदगी भी तो हवा की तरह है, कभी तेज़ कभी धीमी, लेकिन अगर हम उसके साथ चलना सीख लें तो हर सफ़र आसान लगने लगता है। तो आइए सुनते हैं दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म जब हैरी मेट सेजल से ये गीत, और इस गीत की फरमाइश की है हिंगड़ी आलौट रतलाम से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़ युवराज और शिवांगी धाकड़ ने, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नहवाकर, निर्मला और विशाल नहवाकर ने, कोला सिटी बरकाना से अल्फाज ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्लीन और कमल कुमार ने। तो आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म हैरी मेट सेजल से ये गीत, और इसी गीत की फरमाइश भेजी थी नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहवाकर, निर्मला और विशाल नहवाकर ने, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगोले, सोपान तायडे और आशीष मुरहेकर ने। दोस्तों आप सभी भी अपने पसंद के गीतों की फरमाइश हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है क्रम युवा पसंद युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। हमारी ईमेल आईडी है yuvapasandair@gmail.com, yuvapasandair@gmail.com। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे फरमाइशी पोस्ट पर अपने पसंद के गीतों की फरमाइश भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्रम युवा पसंद बस यहीं तक। दोस्तों समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बताते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पे और क्रम इंद्रधनुष। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत। अपनी दोस्त रागिनी चौबे को नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युवाणी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी

एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और

0: मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सूरजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख छत्तरधारी प्रजापति का है।
2: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सूरजपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 1 जुलाई से लागू हो गई है। ये योजना मनरेगा का स्थान लेगी। इस योजना के शुभारंभ अवसर पर सूरजपुर में 2 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं जिला कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जीरामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि आधारित कार्य और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत जीरामजी योजना और मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई बिजली की नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। श्रोताओं, राज्य सरकार ने खंड और अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई यानी DSR तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार DSR तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है। प्रति एकड़ करीब 5,000 रूपए तक लागत कम आती है और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। सरकार ने धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अपनाने पर जोर दिया है। किसानों से बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। श्रोताओं, रायपुर में बीते 25 जून को PM श्री विद्यालयों के प्राचार्यों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पिछले 3 वर्षों के दौरान PM श्री विद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सूरजपुर जिले के 3 विद्यालयों ने प्रदेश के शीर्ष 5 विद्यालयों में अपना स्थान बनाया। इनमें जयनगर स्थित PM श्री शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बत्रा स्थित PM श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और प्रेमनगर स्थित PM श्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रेमनगर शामिल हैं।

0: श्रोताओं, सूरजपुर स्थित औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में बीते 30 जून को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश हिमांशु पंडा ने विद्यार्थियों को कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने मनी म्यूल के बढ़ते खतरों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि साइबर ठग विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं को लालच देकर उनके बैंक खातों का उपयोग अवैध लेनदेन के लिए करते हैं, जिससे खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। श्रोताओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई तक ई केवाईसी पूरा नहीं कराने वाले हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। विभाग ने राशन आधारित वितरण में ओटीपी आधारित सत्यापन पर रोक लगा दी है। अब सभी उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। श्रोताओं, शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के लिए सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से कार्यालय आने वाले लोगों को संबंधित विभागों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही कार्यालयीन कार्यों को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए पृथक हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सूरजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख छत्तरधारी प्रजापति का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं, आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ के नामी पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई के निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जतई अपन दुख। आज संझा गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के संग होइस उखर दाह संस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ समेत आने राज्य मल्ला जारी करीस 25,000 करोड़ रुपया। और मौसम विभाग है अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में जोरदार हा वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के नामी पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के निधन हो गए है। लंबा बेरा ले उमन बीमार चलत रहीन। उनखर इलाज रायपुर के एम्स में चलत रहीस। आज मुंधरा करीबन 3:15 उमन आखिरी सांस लीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत आने नेता मन तीजन बाई के निधन पर दुख जतैन। प्रधानमंत्री श्री मोदी हा तीजन बाई के निधन पर दुख जतावत अपन सोशल मीडिया पोस्ट में कहे हैं कि तीजन बाई हा छत्तीसगढ़ के लोक कला ला अपन भव्य प्रस्तुति ले दुनिया भर में एक ठीन विशिष्ट चिन्हारी देवैन है। उखर जवई हा कला और संस्कृति जगत पर बड़का नुकसान है। तीजन बाई के निधन के समाचार मिलते साठ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत ले जुड़े मनखे और अन्य लोगन मन एम्स पहुंच के तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर फूलमाला अर्पित करीन। मुख्यमंत्री हा किहिन कि तीजन बाई हा अपन अद्भुत गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपरा मल्ला संजोवत छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पहचान ला विश्व पटल मा स्थापित करीन।
3: आज श्रीमती
2: पैसे तीजन बाई के व्यक्तित्व पर तैयार करेगी प्रादेशिक समाचार एकांश।
3: भूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में अनवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें।
2: पेशे तीजन बाई के व्यक्तित्व पर तैयार करेगी प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर के एक रिपोर्ट।
4: तीजन बाई के जन्म 24 अप्रैल 1956 के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के गनियारी गांव में साधारण परिवार

0: मा होय रहिस। नान्हेपन ले ओमन महाभारत के कथा ल सुने अउ गाय के शौकीन रहिन। सामाजिक विरोध अउ आर्थिक तंगी के बाद घलो ओमन एमा रमे रहिन। माई लोगन मन बर ओ बेरा मा पंडवानी ला कापालिक शैली मा गवाई ला वर्जित माने जात रहिस। फेर तीजन बाई हा ए रीत ला तिरिया के मंच मा अपन अलगे चिन्हारी बनाइन। तीजन बाई हा अपन मजबूत आवाज, रौबदार एक्टिंग अउ पंडवानी ला अनोखा रूप ले प्रस्तुत करे के शैली ले पंडवानी ला न केवल देश मा भलुक विदेश मा घलो नवा पहचान देवाइन। महाभारत के कथा ला मंच मा जियत असन दिखाए मा उखर कला हा उनला भारतीय लोक संस्कृति के सबले नामी कलाकार मा शामिल करिस। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर।
1: तीजन बाई के दाह संस्कार आज संझा दुर्ग जिला में स्थित उखर गांव गनियारी में पूरा राजकीय सम्मान के संग करेगी। उखर बाबू पिला दिलहरन पारधिया उनला मुखाग्नि दिन एकर पहली पुलिस डहर ले उनला गार्ड ऑफ आनर देगी। अंतिम संस्कार में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद विजय बघेल समेत जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कलाकार, साहित्य और उखर हजारों प्रशंसक मन डबरवत आंखी ले लोक कला के ए महान विभूति ला आखिरी प्रणाम करीन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा 1 जुलाई ले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम सफलतापूर्वक सफल लागू होय ऊपर खुशियारी जतैन है। श्री सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया ए मिशन के अंतर्गत राज्य मन पर 25,000 करोड़ रुपया के मुख्य सहायता राशि जारी करीन। श्री चौहान हा सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के ग्रामीण विकास मंत्री मन संग VBG रामजी योजना मन ला लागू करे बारे में समीक्षा घलो करीन। ओमन कहिन की आज जारी करेगे पहला किस्त के उद्देश्य ये तय करना है कि राज्य मंत्री पर्याप्त धनराशि हो जेखर ले मजदूरी के भुगतान 15 दिन के भीतर करे जा सके। ओमन यहू कहिन की मनरेगा ला लागू होए मा 3 बछर ले ज्यादा के बेरा लगे रही से फिर विकसित भारत जी राम जी पूरा देश मा सिर्फ एक ही दिन मा लागू हो गए है। श्री चौहान हा कहिन की विकसित भारत जी राम जी योजना के चलत मजदूरी दर ला औसतन करीबन 10% बढ़ाए गए है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य मनबर नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में रखे गए 2 दिन वाले चिंतन प्रशिक्षण शिविर के आज समापन हुआ थे। एकर पहली आज बिहनिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य मन योगाभ्यास करके स्वस्थ और संतुलित जीवन के आरो दिन एकर संगे आज बिहनिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य मन योग अभ्यास करके स्वस्थ और संतुलित जीवन के संदेश दिन एकर संगे संग मुख्यमंत्री नया रायपुर स्थित IIM कैंपस में एक माँ के नाम अभियान के चलत पौधा घलो लगाइन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौका में रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र के चुनौती, उपलब्धि अवैया बेरा में संभावना मन पर केंद्रित एक विशेष पैनल गोटबात रखे गये रही। कार्यक्रम के शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मार्क फेड के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशुन सिंहा करीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार डहार। स्कूल शिक्षा विभाग हा बताए है कि प्रदेश में पहली ले 8वीं कक्षा तक पढ़िया लैका मन बर तैयार करे जात रेडीमेड स्कूल ड्रेस के क्वालिटी के 100% जांच करे बाद ही स्कूल मन में पठोए जात है। राज्य हाथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ के मुताबिक स्कूल ड्रेस ला स्थानीय बुनकर और महिला स्व सहायता समूह मन के माध्यम ले तैयार करे जात है। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में ये स्कूल ड्रेस के सप्लाई पूरा हो गए है। फिर आने क्षेत्र में ये काम चलत है। स्कूल शिक्षा विभाग स्पष्ट करे है कि क्वालिटी या साइज संबंधी शिकायत मिले ऊपर स्कूल ड्रेस ला तुरते बदले जाही। सूरजपुर जिला में आज एक ठिन खदान में चट्टान धस के ले 2 झीन मजदूर मन के मौत हो गए। मिले जानकारी मुताबिक जिला के लांची गांव तीर के खदान में मजदूर मन खोदत रहिन तभे हुरहा खदान के चट्टान धसक गए जेखर ले 2 झीन मजदूर मलबा में दब गिस। घटना के सूचना मिलते साथ पुलिस और प्रशासन के टीम मौका जगह में पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन चलेस। यहाँ ले दोनों मजदूर के लाश ला बाहर निकाले गिस। पुलिस मामला के जाँच करत है। अब पेशे मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में जोरदार वर्षा होए के चेतावनी दे है। उन्हें एबेरा उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक ठीन चक्रवाती घेरा बने की स्थिति प्रदेश में वर्षा होला धर ली है। आज बिहनिया राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कतकुन जगह गरजे चमकई के संगे

0: पानी गिरे के खबर है। नारायणपुर जिला के छेरीबेड़ा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के टीम है राजस्थान के उदयपुर में राखे गई जोनल राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में उप विजेता के स्थान हासिल करी है। ये विद्यालय के 8 जिन नोनी बाबू के चुनाई नेशनल बर हो है। छत्तीसगढ़ ला खरीफ सीजन बर 46,500 मीट्रिक टन उपहार डीएपी खातु आवंटित करेगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एखर बर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा बर आभार जतैन है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। छत्तीसगढ़ की नामी पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के निधन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जतैन अपन दुख। आज संझा गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के संग होइस उनखर दाह संस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ समेत आने राज्यमल्ला जारी करीस 25,000 करोड़ रुपया। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में जोरदारहा वर्षा होए के देहे चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम गोधुली में लीजिए सुनिए, ये देवी भजन सरगुजिया में कलाकार हैं गुरु सिंह पैकरा और साथी।

कार्यक्रम गोधूली में अब प्रस्तुत है बदन राम और साथियों के स्वर में ये रामचर्चा कर्मा गीत।

बदनराम और साथियों के गाए सरगुजिया लोकगीत के साथ कार्यक्रम गोधूली अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। विषय है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। वक्ता है कुमारी निशा गोड़बोले, अधिवक्ता रायपुर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रायपुर और सरायबली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। कानून की बात लीजिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध। इस विषय पर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती उषा किरण वाजपेयी से की गई बातचीत। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति है।

0: कानून की बात कार्यक्रम के आज के हमारे इस नवीन अंक में किशोर न्याय बोर्ड और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के संबंध में जो विधियां हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती उषा किरण वाजपेयी। आप किशोर न्याय बोर्ड की माननीय सदस्य हैं, आज आप इन दोनों विषयों के संबंध में हमें जानकारी प्रदान करेंगी। वाजपेयी मैडम, आपका आकाशवाणी परिवार में सर्वप्रथम हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यह जानना चाहेंगे कि किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय से संबंधित अधिनियम कब भारत में प्रवृत्त हुआ है?
1: किशोर न्याय बोर्ड ब्रैकेट में बालकों के संरक्षण और देखरेख अधिनियम 2015, ये भारत में 15/1/2016 से लागू हुआ है। इसकी अधिसूचना 31 दिसंबर 2016 को निकाली गई थी। संपूर्ण भारत लागू होता है ये।
0: जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम को लागू करने की या बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, कृपया इसके बारे में बतावें।
1: ये अधिनियम जो है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लाया गया था। वैसे तो पूर्व के जो एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, उनमें पूर्व से सारी धाराएं उपस्थित हैं, सारे अनुतोष उपस्थित हैं, लेकिन बच्चों के जो 16 से 18 के बीच के बच्चे हैं, भारत अन्वेषण अपराध ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि प्रतिदिन जघन्य अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसीलिए इस कानून को कई बार संशोधित करके और 2015 में लाया गया, और शने शने मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भी होती हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें सेक्शन अनुच्छेद 15 जो है
0: जी,
1: वो राज्य सरकार को उपबंध करने के लिए अनुमति देती है, और अनुच्छेद 45 और 47 बच्चों के मूल अधिकार जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, उन पर अधिक से अधिक उनकी सुविधाएं, उनको सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुए न्याय प्रक्रिया पर बात करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, और इस अधिनियम में सारे अधिनियम जो पूर्व से हैं उनको भी समेकित करके एक अधिनियम में लाया गया।
0: किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत यदि किसी अवयस्क बालक

0: के संबंध में कोई अपराध पाया जाता है तो प्रक्रिया किस प्रकार की अपनाई जाती है, कृपया बतावें।
1: देखिए, 18 साल से कम उम्र का बालक यदि कोई अपराध करता है, अपराध जो होते हैं इस एक्ट के तहत तीन तरह के होते हैं
0: जी।
1: एक तो छोटे अपराध होते हैं जिन्हें पेटी ऑफेंस भी बोलते हैं, वो 3 वर्ष तक के जिसमें सजा है वो उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे सीरियस ऑफेंस होते हैं जिन्हें घोर अपराध कहते हैं, और उसमें 3 से लेकर 7 वर्ष तक वाले जिनमें दंड का प्रावधान है वो उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जघन्य अपराध आते हैं, हीनियस ऑफेंस, उसमें 7 वर्ष से ऊपर जितने भी अपराध हैं उनकी गणना इसके अंतर्गत होती है। इन तीनों में से किसी भी अपराध में यदि अभिरक्षा में लिया जाता है तो उस बालक की गिरफ्तारी करके और एक रिमांड तैयार की जाती है, न्यायिक रिमांड जिसको बोलते हैं, उसमें उसकी पूरी SBR होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसको एकत्रित करके उस न्यायिक रिमांड को गिरफ्तारी की डेट से 24 घंटे के अंदर माननीय बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया जाता है। उपस्थित किए जाने पर सर्वप्रथम हम उसकी एज का, कि वो बालक 18 वर्ष से कम है, उसका निर्धारण करते हैं
0: जी।
1: उसके बाद बोर्ड में उपस्थित होने के बाद उस बच्चे को रिमांड के साथ उसको संप्रेक्षण गृह, जहाँ बच्चों को उसे सुधारक गृह भी बोलते हैं, सुधार हेतु रखा जाता है, वहाँ रख दिया जाता है, उसको समरी ट्रायल बोलते हैं। उसके बाद जो आगे और जघन्य और घोर अपराध हैं
0: जी,
1: उनके बारे में समन ट्रायल होती है, बालक को उपस्थित होता है, उसको प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है जो डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसके बाद ऊपर आरोप लगाया जाता है। यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि घोर अपराध जो हैं उसमें भी यदि अपराध जघन्य या क्रूरतापूर्ण नहीं है तो वहाँ पर भी बालक को, किशोर को छोड़ा जा सकता है सामुदायिक सेवा के साथ, या उसको जुर्माना लगा के वहाँ भी छोड़ा जा सकता है। परंतु जघन्य हीनियस ऑफेंस जो हैं
0: जी,
1: उनमें किसी भी प्रकार का छोड़ने वाला प्रावधान नहीं होता है, पूरी प्रक्रिया चलती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, आरोप के बाद गवाहों के कथन होते हैं, उसके बाद मुलजिम कथन होता है, मुलजिम कथन के बाद अंतिम तर्क होता है, और अंतिम तर्क के बाद बोर्ड द्वारा जो भी निर्णय होता है वो सुनाया जाता है। इस तरह से कानूनी प्रक्रिया तीनों अपराधों में अलग अलग तरह की होती है।
0: किशोर न्याय बोर्ड और आप जैसे सदस्य जो होते हैं उनका इस पूरी प्रक्रिया में क्या योगदान होता है, क्या भूमिका होती है, कृपया इसके बारे में बतावे।
1: जी, बोर्ड जो है वो, उसको अभित्रास बालक को नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बोर्ड नाम दिया गया है। बोर्ड में डाइस की व्यवस्था नहीं होती है, वकील साहब लोग और जो पुलिस है वो भी वर्दी में नहीं आते हैं, अपनी काले कोट को बाहर करके फिर ही बोर्ड में उपस्थित होते हैं। बोर्ड का गठन जो है उसमें प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधान न्यायाधीश कहलाते हैं, वो रहते हैं, और उनके साथ 2 सामाजिक सदस्य रहते हैं जिनको कम से कम शिक्षा में, चिकित्सा में, बालक के कल्याण के कार्यों में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोनों मेंबर्स और प्रधान मजिस्ट्रेट मिलकर जो है वो न्यायपीठ का गठन करते हैं। फिर बोर्ड जो है वो अपने कृत्यों का मिलकर निर्वहन करते हैं।
0: वर्तमान बदले हुए परिदृश्य में किशोर न्याय बोर्ड में किस प्रकार की सुधार की गुंजाइश है, अन्य क्या क्या उपबंध इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं, कृपया हमें इसके बारे में भी जानकारी दें।
1: अनुतोष तो बहुत सारे दिए हुए हैं, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है
0: जी।
1: तो इसलिए उसमें मैं जो समझती हूँ, बोर्ड में आवश्यक रूप से उनकी काउंसलिंग होना चाहिए, बच्चों की हर काउंसलिंग अलग अलग सब्जेक्ट पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे, फिर आपका भरण पोषण पे और पर्यावरण पे, नशाबंदी पे, इन सब विषयों पे अलग अलग दिन अलग अलग काउंसलिंग की जाना चाहिए। बच्चे जो हैं उनके सर्वोत्तम हित और कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, अतः मैं चाहूँगी कि वहाँ पर मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों में सुधार कैसे हो, के लिए योग क्लास, आपका गीता की क्लास और ड्राइंग, पेंटिंग ये तो होती ही है, उसके साथ साथ कौशल विकास के लिए उनको मैकेनिकल या जैसे प्लम्बर की है ऐसी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए
0: जी।
1: जिससे वो निकलने के बाद अपनी जीवन दिनचर्या को सही ढंग से चला।
0: जैसा कि हमारा दूसरा विषय है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण।

0: क्षण अधिनियम, सर्वप्रथम यह अधिनियम कब लागू हुआ कृपया हमें बतावें।
1: घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम जो है 2005 है और ये 17/10/2006 को इसकी अधिसूचना जारी की गई, उसके बाद 26/10/2006 से ये पूरे भारत पर लागू किया गया।
0: यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है, इस प्रकार की प्रताड़ना को सह रही है, तो उसके लिए इस अधिनियम में क्या उपचार किए गए हैं कृपया बतावें।
1: देखिए, ये एक्ट जो है इसमें भी सिविल और दांडिक पूर्व से जो अधिनियम बने हुए हैं
0: जी,
1: उनमें सारी अनुतोष उसमें दिए गए हैं, परंतु उन सब को समेकित करके, एकग्र करके, और ये अधिनियम बहुत ही उपयोगी अधिनियम है जो बनाया गया। इसके अंतर्गत जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनमें आपसी रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी होना जरूरी है
0: जी,
1: घर के अंदर रहकर, चाहे वो विवाह से संबंधी रह रहे हों साथ में, या साझा रूप से रह रहे हों, या दत्तक ग्रहण के रूप में रह रहे हों, या एक संयुक्त परिवार में रह रहे हों, यदि वो जो घरेलू नातेदार हैं वो उस महिला को प्रताड़ित करते हैं शारीरिक, भावात्मक या मानसिक, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि महिलाएं घर के अंदर रहती हैं, घर के अंदर की बात को बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इस अधिनियम के आने से, बहुत ही सरल अधिनियम बनाया गया है, छोटा अधिनियम और बड़ा रिलीफ दिया गया है। इसमें महिला जो है उसके कोई हिंसा होती है तो वो जो भी जानते हैं, महिला स्वयं भी पीड़िता जो है, जिसको मैं पीड़िता बोलूँगी
0: जी,
1: पीड़िता स्वयं भी जाकर इसमें रिपोर्ट कर सकती है, या जो उस हिंसा को जान रहे हैं, समझते हैं, वो भी जाकर के और रिपोर्ट लिखा सकते हैं, परंतु इसके लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है
0: जी,
1: जिनके पास जो महिला पॉलिसी होती है उनके पास एक प्रारूप होता है, प्रारूप एक, जिसमें महिला की जो भी हिंसा हुई है और वो जिस तरह का अनुतोष चाहती है उसको पूरा लिखा जाता है, और लिख करके फिर उसको सत्यापित करता है जो संरक्षण अधिकारी होता है, सत्यापन के साथ और शपथ पत्र के साथ उसको माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। वहाँ भेजने के बाद मजिस्ट्रेट उसकी जांच करने के बाद प्रथम सुनवाई दिनांक निश्चित करता है, उस दिनांक से 60 दिन के अंदर प्रकरण को समाप्त किया जा सकता है
0: जी,
1: और सुनवाई दिनांक से 2 दिन के अंदर या माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी समय दिया जाता है उसके अंदर उस प्रत्यर्थी यानी जो प्रतिवादी है
0: जी,
1: जिसने हिंसा की है उसके ऊपर तामील कराई जाती है। तामील होने के बाद वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। सबसे बड़ी बात इस अधिनियम में ये है कि ये न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सिविल अधिकारों का प्रवर्तन कराया जाता है, ये इस अधिनियम की विशेषता है। जब वो उपस्थित होता है उसके बाद संरक्षण अधिकारी के बाद एक प्रोसेस सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है जांच के बाद, और वो संस्था भी हो सकती है या व्यक्ति भी हो सकता है। उसका कार्य होता है विभिन्न प्रकार के अनुतोषों की व्यवस्था की गई है जिसमें 18 धारा उसको संरक्षण प्रदान करती है, यदि महिला उस घर के अंदर प्रताड़ित है तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाए वो उससे पूछा जाता है, और प्रारूप भर के ही उसमें उसकी सुरक्षा के लिए जो उपाय हैं जो वो चाहती है उसकी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद धारा 19 आती है, 19 में निवास की व्यवस्था की जाती है, यदि महिला बहुत प्रताड़ित है तो उसको निवास के लिए व्यवस्था घर के अंदर ही की जाएगी, या अगर वो नहीं रहना चाहती है तो घर के बाहर भी आश्रय, खुला आश्रय होता है उसमें उसकी व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा की जाती है
0: जी।
1: 20 में उसको धन संबंधी, यदि वो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है तो धन संबंधी आदेश दिया जाता है। 21 में उसको अभिरक्षा का अधिकार दिया गया है, यदि उसके पास बच्चा है और उस प्रतिवादी के पास रह रहा है तो वो अस्थायी रूप से उसकी कस्टडी दी जा सकती है। उसके बाद 22 में जो है प्रतिकर यानी कंपनसेशन, उसको जो भी क्षति मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, जो भी क्षति हुई उसमें, जो भी खर्च हुआ है उसके रूप में उसको क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है।
0: कार्यक्रम के अंत में अब हमारे जो आज के दोनों विषय हैं इनके संबंध में हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कृपया बतावें।
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगी हमारे श्रोतागणों को कि आपको ये छोटे छोटे अधिनियम जो मिले हैं वो बहुत बड़ा बड़े रिलीफ को प्रदान करते हैं, अतः इनका आप पूरा उपयोग करिए और

0: और इसके लिए हमारा जिला विधिक प्राधिकरण जो है वहाँ आपको सारी तरह की सहायता दी जाती है
1: जी।
0: और ये दोनों अधिनियम जो हैं पूर्व से एक्टों में हैं, लेकिन इनको एकाग्र करके एक व्यापक रूप में संक्षिप्त एक्ट बना के और बहुत बड़ा रिलीफ प्रदान करने के लिए इन्हें बनाया गया है
1: जी।
0: और महिलाओं को विशेष तौर से जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनको आगे आके घर के अंदर हिंसा को सहन करने की बजाय यदि आपको सब कुछ दिया गया है तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
1: श्रीमती वाजपेयी जी, आज आपने हमें इन दोनों विषयों के संबंध में बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। निश्चित रूप से ये जानकारियां हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगी। आपने समय निकाला, हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार पत्रकार जो हूँ।
8: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
9: क्यों?
8: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
10: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
11: अरे गोपाल जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
12: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
12: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
11: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
12: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की

0: खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। धमधा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य नेताओं ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तीजन बाई के निधन का समाचार मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया।
5: आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें।
4: पेश है तीजन बाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समाचार एकांश रायपुर द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट।
6: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। महिलाओं के लिए उस दौर में पंडवानी की कापालिक शैली में प्रस्तुति देना वर्जित माना जाता था, लेकिन तीजन बाई ने इस परंपरा को तोड़ते हुए मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
4: तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके गृह ग्राम गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पुत्र दिलहरण पारधी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले पुलिस

0: इसने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद विजय बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों तथा हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ को खरीफ सीजन के लिए 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त DAP उर्वरक आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री JP नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त DAP मिलने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो रहा है। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में 1 पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मार्कफेड के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने किया। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। सूरजपुर जिले में आज एक खदान में चट्टान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले की लांची गांव के पास संचालित खदान में मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खदान की चट्टान ढह गई और वहां काम कर रहे 2 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुर्ग जिले के धमदा में 1,11,00,000 रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी की पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इस कंपनी के ऑडिट में अनियमितताएं सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि इन 4 आरोपियों ने 267 ग्राहकों से ऋण की किस्त और अन्य भुगतान लेकर कंपनी में जमा नहीं किए। पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नारायणपुर जिले के छेरी बेड़ा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की टीम ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित जोनल राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में उपविजेता का

0: स्थान हासिल किया है। विद्यालय की 8 छात्र छात्राओं का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। ये विद्यार्थी नई दिल्ली में संसद भवन का शैक्षणिक भ्रमण करेंगे और संसद की कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। इनमें हर्षा ने लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मनसाय और अनुराधा उपविजेता रहे। अंजिला, निकिता, वेदिका, जयबती और शामी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आज 5 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले डुमतराई थोक बाजार फेज 2 के नामकरण और लोकार्पण समारोह को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा गांव में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्का जाम को प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। धमधमे 1 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। अब सुनिए विश्वविख्यात पांडवानी गायिका विदुषी तीजनबाई की कला साधना और लोक कला के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय योगदान पर श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम विदुषी तीजनबाई एक स्मृति शीश। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।

0: संघों को पंडवानी गायन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ की माटी से जन्मी पंडवानी की पहली महिला कलाकार होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। विदुषी तीजनबाई के लोक कला को समर्पित जीवन को याद करते हुए कला, संस्कृति, साहित्य और सभी वर्गों के नागरिकों ने उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: मैं कविता वासनिक, लोक गायिका। आज के दिन बहुत दुखद है। सुबह सुबह समाचार मिली कि हमार पद्म विभूषण तीजनबाई नहीं रही से बहुत ही खराब लगी, बहुत दुख हुई से। फिर सबे जब हमार तीजनबाई है हमार छत्तीसगढ़ भर ही नहीं बल्कि पूरा देश भर अपूर्णीय क्षति है। तीजनबाई हमार धरोहर है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें हमेशा याद रखी। आज तीजनबाई शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर उसकी कलाकारी हमेशा जीवंत रही। वो ऐसे उदाहरण स्थापित करके गए हैं। तीजनबाई महिला सशक्तिकरण के घनो उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में जब महिला मन के घर से बाहर निकलना मुश्किल रही थे तब ले वो संघर्ष करके झेल करके पद्म विभूषण पाई थे हमारे।

0: छत्तीसगढ़ के मान सम्मान ला बढ़ाई से आज जतक महिला मन पंडवानी गाते सबो महिला मन कहीं न कहीं सीजन बाई ला अपन में सोचे हमर पंडवानी ला वो छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के विश्व स्तरीय में विश्व स्तर में पहचान दिलाई से वे ऐसा हमर छत्तीसगढ़ के गौरव सम्मान ला पहचान ला मैं नमन करत हूँ प्रणाम करत हूँ और अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ जब तक ये दुनिया रही सीजन बाई के नाम हमेशा अमर रही।
1: आप हैं भाषाविद श्री चित्रंजन कर।
2: पद्म विभूषण सीजन बाई का निधन छत्तीसगढ़ी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय जो गायिका और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रकार से हमारा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई पता नहीं कब होगी। पूरा छत्तीसगढ़ आज स्तब्ध है उनके इस निधन के समाचार से। उन्होंने पंडवानी को जो ऊंचाई प्रदान की केवल देश नहीं देश के बाहर कई विदेशों में कई अन्य देशों में उन्होंने जो यहाँ का परचम फहराया

0: नमन करत हो, प्रणाम करत हो और अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हो, जब तक ये दुनिया रही तीजन भाई के नाम हमेशा अमर रही।
1: आप हैं भाषाविद श्री चित्रंजन कर।
2: पद्म विभूषण तीजन भाई का निधन छत्तीसगढ़ी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय जो गायिका और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रकार से हमारा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई पता नहीं कब होगी। पूरा छत्तीसगढ़ आज स्तब्ध है उनके इस निधन के समाचार से। उन्होंने पंडवानी को जो ऊंचाई प्रदान की, केवल देश नहीं देश के बाहर कई विदेशों में, कई अन्य देशों में उन्होंने जो यहाँ का परचम फहराया, वो वास्तव में एक इंसान के वश की बात नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पढ़ाई का मतलब केवल डिग्रियां नहीं होती, जो अनुभव की पढ़ाई है और जो संस्कार जो उनको मिले और उनकी जो साधना थी उससे वो बहुत ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गई और उन्होंने एक ऐसा अमर नाम छोड़ा अपने पीछे जिसके सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।
3: मैं अनुराग ठाकुर, चंदैनी गोंडा से जुड़ी हुई होने के कारण भिलाई में जब लोक कला महोत्सव होता था उस समय हम लोग, ये सन 72 की बात है और उसके बाद कंटिन्यू वहाँ होते ही रहता था भिलाई में, तो बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां वहाँ आती थी अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपने कार्यक्रम देने के लिए। तो वहाँ तीजन भाई जी से मुलाकात होती थी हमारी, वो भी आती थी पंडवानी का अपना कार्यक्रम लेकर, और हम लोगों का भी प्रोग्राम होता था, क्रम से होते जाता था सबका प्रोग्राम, अपना अपना प्रोग्राम देके लोग जाते थे। तीजन भाई जी का भी होता था, तो पंडवानी चूंकि लंबा चलता है तो उनका प्रोग्राम थोड़ा सा बाद में रखा जाता था, और बहुत बुलंद आवाज की थी, परफॉर्मेंस उनका ऐसा रहता था कि बिल्कुल जैसे कुछ शेडो प्ले जैसा है, लेकिन वो अकेले ही भीम का भी किरदार कर रही हैं, दुर्योधन का भी, और वो महाभारत के प्रसंग को लेकर ही करते हैं अक्सर पंडवानी का तो कार्यक्रम जो होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको निभाती थी, सभी रोलों को, जितने भी पात्र उसके रहते थे, और बिल्कुल लगता था दमखम के साथ वो देती थी प्रोग्राम अपना, और उनके वादक कलाकार भी थे, साथ में गाना भी चलता था, अभिनय भी चलता था, और तेज आवाज में, बुलंद आवाज में उनकी, जो आज भी उनकी आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही है। और बड़े दुख की बात है कि इतनी अच्छी कलाकार, इतने सारे उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव श्रीमती तीजन भाई, एक बहुत बेहतरीन कलाकार आज छत्तीसगढ़ ने खो दिया है, और उनकी उनके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके जैसा कलाकार अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है, पर ईश्वर करें कुछ ऐसे उनके शिष्य मिल जाए जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाए, यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ।
4: मैं पद्मश्री राधेश्याम मारले, पंथी लोक नृत्य के कलाकार, आज पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई जी के अंतिम संस्कार में गांव गनियारी निकले हैं, पंच लकड़ियां दे करके सैकड़ों कलाकार इस पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई जी के अंतिम यात्रा में हम सब सम्मिलित हुए, और चूंकि पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, और कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान है, छत्तीसगढ़ को बहुत बड़े नुकसान हुआ है, साथ ही साथ में पूरा देश आज छत्तीसगढ़ से पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई की शोकाकुल परिवार सहित पूरा हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं, और मैं ऐसे दुखद घड़ी में पद्म भूषण डॉक्टर तीजन भाई की अंतिम यात्रा उनके पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
5: मैं साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, मेरा गांव है लिमतरा और उसी से लगा हुआ गांव है मेरे मामा गांव नदोरी, तो इस तरह से छुटपन से हम लोग तीजन भाई को उस गांव में आते जाते देखते थे, क्योंकि उनका गांव जो है वहां से लगा हुआ है, और इस तरह से मैं लगातार मेरा संबंध उनसे रहा। बाद में संयोग रहा कि मैं सामुदायिक विकास विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र में छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव का संयोजक हुआ। दानेश्वर शर्मा जी, विमल पाठक जी के रिटायरमेंट के बाद मुझे दायित्व मिला संयोजन का, तो उसमें तीजन

0: भाई जी के साथ लगातार हर प्रदर्शन में उनके करीब रहने का अवसर लगा। फिर बाद में जब उन्होंने भारत महोत्सव के लिए फ्रांस की यात्रा की, तो वहां से उनके लौटने पर मैंने एक आर्टिकल धर्मयुग में लिखा, फ्रांस में छत्तीसगढ़, जिसको उन्होंने बहुत पसंद किया। फिर अभी मेरी एक किताब आई हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों में मैंने तीजन बाई को भी शामिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है तीजन बाई जी की कि उन्होंने नारी जगत के सम्मान को बढ़ाया, छत्तीसगढ़ के सम्मान को बढ़ाया, देश के सम्मान को बढ़ाया। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी जो पंची बहुत चमत्कार है, जिसमें कि दो विधाएं होती हैं, जिसमें कापालिक शैली को अभिनय के साथ प्रदर्शित करने का जो कमाल तीजन बाई ने किया, वो किसी दूसरे कलाकार से संभव नहीं हुआ। ये एक पूरी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है पंडवानी कथा मंच में कहने की। और तीजन बाई जो है कापालिक शैली को लेके जिस ढंग से उन्होंने अभिनय किया और जिस ढंग से लोक शैली को जोड़ा और लोक कथाओं को भी वो व्यास के और सुबल सिंह चौहान के महाभारत में जो कथाएं हैं उसको लेकर के, और उन्होंने जो काम किया वो बड़ा काम है। तीजन बाई अपने बचपन के दिनों में देवांगन जी की कथाओं को 18-18 दिन सुनती रही, अपने सीनियर लोगों से उन्होंने बैठ करके लोक शैली में सुना, और नाना जी उनके जो थे वो उनके गुरु थे, नाना स्वयं गाते थे तो उसको छुप के सुनती रही। लेकिन नाना जी ने कहा कि बेटा छुप के मत सुनो, तुमको मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा वो पहले गुरु बने। इस तरह से तीजन बाई ने बहुत संघर्ष करके अपने को स्थापित किया, और वो भीतर में इतना उनकी शक्ति रही कि उन्होंने नारी स्वतंत्रता का भी काम किया, और तीजन बाई का जो योगदान है वो पहली महिला पद्म विभूषण है। तो इस तरह से उन्होंने देश छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया, और छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के विश्व में जाने वाले जो बड़े बड़े कलाकार हुए, उनमें से देवदास बंजारे जी और तीजन बाई का बड़ा नाम है, जो भारत महोत्सव के माध्यम से और दुनिया ने छत्तीसगढ़ी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित कथाओं को सुना, उसका ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और वो इतना अभिनय के कारण वो पूरे महाभारत को मंच पर रचती थी, और इस मुरे को महाभारत के वीरों की आयुध के रूप में प्रयोग करके तीजन बाई ने एक कमाल किया। मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि गनियारी गांव से लेकर के और दिल्ली से लेकर के तमाम जो उनकी यात्राएं हुई उनको देखने का अवसर लगा और समझने का अवसर लगा, और तीजन बाई के योगदान को, तीजन बाई के सम्मान को देखने का अवसर लगा, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। आज उन्हें हम बहुत भरे मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जितने दिनों के लिए आई उन्होंने एक युग को अपनी छाप छोड़ी, और ये तीजन का युग कहलाएगा। हम उनको सादर श्रद्धांजलि भेंट करते हैं।
1: मैं राकेश तिवारी, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित और लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ लोक कलाकार। तीजन भाई जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है। राजीव बनने से पहले मैं जब बचपन में 8वीं पढ़ रहा था, उस समय पहली बार पंडवानी सुना था मेरे मामा गांव अकोली में। और उसके बाद लगातार जब मैं संस्कृति विभाग में था तो लगातार 2001 से 2015-16 तक उनके लगातार जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते थे उसको मैं बैठकर सामने बैठकर देखता था। उनके साथ बहुत सारे टूर में भी गया, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, और बहुत सारी यादें हैं। और वो तो कापालिक शैली ही बनाने वाली थी, उनका सीजन करता ही माना जाए एक तरीके से। और छत्तीसगढ़ का गौरव है, छत्तीसगढ़ को जब भी कोई पूछते थे कहाँ से हो तो हम बोलते थे भाई यहाँ तीजन भाई है, वहीं से हैं। तो उनका एक वर्षा भी हमने विभाग के द्वारा किया था, संस्कृति विभाग के तहत, जिसमें 12 से 15 जो बच्चे हैं वो विधिवत उनसे पंडवानी की शिक्षा ग्रहण की थी, जो आज भी कई लोग उसमें पंडवानी गा रहे हैं। और बहुत ही अपूर्णीय क्षति है उनका निधन, जो कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।
2: मैं ग्राम पीरदा सी के रहने वाली पंडवानी गायिका शांति बाई छेलक, और सन 88-89 से तीजन दीदी के साथ मैंने कार्यक्रम दी है। पहले बम्बई में मैंने कार्यक्रम दिया उसके साथ 1.5 महीना का, उसके बाद इलाहाबाद जोन से भी हमने कार्यक्रम दिए, भोपाल में कार्यक्रम दिए, और और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह उसके द्वारा भी हम

0: लोगों को सम्मान वगैरह मिला। और सीजन दीदी बहुत अच्छे मतलब छत्तीसगढ़ के एक अच्छे गायिका रही। सीजन भाई आज नहीं रही और मैं कलाकार हूँ तो मुझे बहुत मतलब दुख महसूस हो रही है। अब सीजन दीदी के नाम तो बहुत देश विदेश में है, बेटी हो चाहे बहू हो, लेकिन तीजन दीदी जैसे बहू बनना और बेटी बनना और कलाकार बनना शायद मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के नाम तीजन दीदी ने देश विदेश में अपने नाम रोशन की है और बहुत पछतावा हो रहा है हम लोगों को। पंडवानी गायिका है हम तो, मैं बहुत सारे बात है जो तीजन दीदी से मैं ली हूँ। जैसे मैं इलाहाबाद जोन में कार्यक्रम देने के लिए गई और दीजन भाई भी उसी मंच में कार्यक्रम दिए तो सर लोगों ने बोला कि जैसे तीजन भाई बोल रही, क्या बोल रही, कैसे बोल रही, वो कथा क्या है वो पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो आवाज देके महाभारत लड़ाई जो कर रहा है उसके बारे में वो गा रही है, वो वैसे टाइप के कलाकार की जरूरत है करके। और मैंने गांठ बांध ली कि मतलब पंडवानी में तो जोश रोश से और ऊंचे आवाज से ही गाए जाते हैं करके, तो कुछ कुछ तो मैं तीजन दीदी से वो मतलब कला उससे मैं ली हूँ। और अब मैं जो जिंदा हूँ तो मैं अपने मरते दम तक तीजन दीदी की याद नहीं भूलूंगी।
1: मैं विजय कुमार दरगाह सारंगढ़ से बोल रहा हूँ। आज श्रीमती तीजन भाई का निधन का समाचार मिला। ये लोक कला लोक गायन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूँ। उन्होंने अपने पंडवानी गायन से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर के अपना और देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उनका जो जीवंत अभिनय जो रहता था महाभारत के पात्रों का, तो सुनने और देखने लायक होता था। तीजन भाई को मैं कुछ पढ़ा है तो उसे पता चलता था कि वो ज्यादा उनकी पारंपरिक शिक्षा कोई बहुत उच्च स्तर तक नहीं हुई थी, फिर भी अपनी कला के बदौलत उन्होंने बहुत अपना नाम किया, अपना अपने परिवार का, देश का, छत्तीसगढ़ का नाम जगह जगह फैलाया। उसके लिए हम अनुग्रहित भी थे उनसे और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में उनको स्थान दें।
2: वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरिनी श्रीवास्तव कहती हैं,
3: तीजन भाई इतनी सहज और सरल थी कि चक्कर वन में रहती थी तो मैं गई थी उसके पास कि आप तो इतने बड़ी उपाधि पा चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देने आई हूँ। सहज रूप से वो मेरे घर आ गई तो मैंने कहा उसको कि तुमको कैसे लगा, अपना अनुभव बताइए वहाँ पर बाहर विदेशों में। तो बोली क्या बताऊँ मैडम, विदेश में विदेश ही रहता है, अपना भारत भारत है करके वो बहुत तारीफ की। पंडवानी के बारे में इतना तारीफ है उसका कि वास्तव में मैं भी देखती हूँ, अभी भी टीवी में आता है कहीं भी आएगा ना तो उसका पंडवानी बहुत बढ़िया गाती है। और इतना नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई कागज देख रही है कर रही, वो मन से गाती है, उसकी अंतरात्मा की आवाज रहती है, इसलिए लोग बहुत मुग्ध हो जाते हैं। जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन तीजन भाई का जाना बहुत दुखदाई लगा क्योंकि वो बहुत दिनों तक बीमार थी और बहुत अच्छी लेडी थी, तो इसलिए जाने पर लगा कि जीवन की पोथी पर अनंत मृत्यु का हस्ताक्षर है, जीवन की पोथी पर अनंत मृत्यु का हस्ताक्षर है, पंच तत्व में मिल जाना ही पुनर्जन्म का द्वार है।
2: विदुषी तीजन भाई ने भारतीय संस्कृति और कला को दुनिया भर में जो पहचान दिलाई है वो अतुलनीय है। कला के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश एक महान सांस्कृतिक संवाहक से वंचित हो गया है।
4: मैं नीर अली जी छत्तीसगढ़ी गायक का आज एक दुखद समाचार, छत्तीसगढ़ के नाम को, इनका नाम ही काफी था तीजन भाई के नाम से जिन्हें जान

0: जाता था और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को लेकर के भारत देश को सम्मान दिलाने वाली ऐसी प्रतिभा आज हमारे बीच नहीं रही। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है। एक बार वो मेरे स्कूल आई थी, सारा गांव हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पीटीआई था, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है रायपुर से। तो प्रार्थना समाप्त होने के बाद अचानक उनकी गाड़ी आई अंदर और तिजन भाई उतरी जब गाड़ी से, तो मैं उनको देख के आश्चर्यचकित रह गया। ये करीब आज से 10-15 साल पहले की बात है। मेरे से फिर उनका परिचय हुआ, बताया मैं ऐसी ऐसी बात है करके, तो बोले आज मैं गाना गा बनिया है पढ़ाया जा रहा हूँ। मैंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, देश दुनिया की बात बताने के लिए तिजन भाई हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के बीच आई थी। तो उनका जो है छात्रों के प्रति स्नेह मेरे को देखने को मिला। मैंने बहन जी बन के आए हूँ ये सब सुन के आज मैं वो उस पल को याद करता हूँ। और दूसरी बात, एक कार्यक्रम कर रहा था मैं मोर माटी के नाचा, ये भी कार्यक्रम 15 साल पुरानी बात है। तो उसमें किजन भाई गेस्ट के रूप में आई थी, जब उसका फाइनल ऑडिशन हुआ रायगढ़ में, तो उनको अपने बीच पाकर वो क्षण को आज मैं याद करता हूँ। निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, केवल यादों में रहेंगी वो। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जहाँ कहीं भी रहें ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
1: राहुल कुमार सिंह, पद्म विभूषण किजन भाई जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, उल्लेखनीय बात यह है कि वो हमारे राज्य की छत्तीसगढ़ की ऐसी विभूति थी जो अकेली ऐसी विभूति जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अंडवानी कला को उन्होंने जिस तरह की ऊंचाई दी, जिस तरह का की पहचान दी और जैसा एक आयाम स्थापित किया, वो अपने आप में अतुलनीय है। उन्हें हमेशा इस तरह से याद किया जाएगा और वो एक कलाकार के साथ साथ एक बहुत ही व्यवहार में ऐसी इंसान थी। मुझे अवसर मिला उन्हें मंच पर देखने का, तो बार बार अवसर मिला। मैं बचपन से ही उन्हें कह सकता हूँ कि देखता रहा हूँ, लेकिन जो मंच के परे, मंच के बाहर ही वो जिस तरह से होती थी और अनौपचारिक चर्चाओं में वो बहुत सारी ऐसी रोचक बातें कहती थी। एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी ध्यान आती है कि किसी चर्चा में जब उनसे मैंने छत्तीसगढ़ी के सोहर गीतों की कि सोहर गीत तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी में नहीं है, सुनने को नहीं मिलते या बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सोहर गीत बहुत सारे हैं। उन्होंने गा के सुनाया और जब इस पर बात निकली तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हम उनको पंडवानी तक ही सीमित मान लिए थे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की पारंपरिक लोकगीत और उसके साथ जो इस तरह से संस्कार गीत या साथी गाथाओं की, लोक गाथाओं की भरपरी की, वो बहुत बढ़िया जानकार गायिका तो अच्छी थी ही। उनके पंडवानी की बात ही क्या। और इसी तरह एक छोटी सी बात और मैं मुझे हमेशा याद आती है कि उनसे बातचीत में मुझे जो ड्रामा के लिए, मंचीय अनुभव के लिए जो फोर्थ वॉल की बात कही जाती है, दर्शकों से मुखातिब होने या दर्शकों के सामने के लिए जो एक आभासी पर्दा है उसे तोड़कर, उसे हटाकर जो जिस तरह से प्रस्तुति कलाकार देते हैं, उनमें वो उसकी पक्षधर होती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि राज्य बनने के बाद एक विशेष आयोजन दिल्ली में विश्व व्यापार मेले के दौरान हुआ करता था, छत्तीसगढ़ दिवस का आयोजन हुआ करता था, उस सिलसिले में, उस क्रम में वो दिल्ली गई थी और राष्ट्रीय संग्रहालय में उनका कार्यक्रम था, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, वहाँ के ऑडिटोरियम में। और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान शुरू होने के बाद हॉल की लकियां जला दी गई, बिजली जला दी गई, लाइटें, और उसको मैंने बंद कराई कि ये तो कलाकार का प्रस्तुति हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद से तो लोग

0: लोगों ने बताया, वहां के लोगों ने कि मैडम ने कहा है कि हल्की बत्तियां नहीं बुझेंगी। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं कार्यक्रम के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत मेरे लिए एक नई सीख थी। उन्होंने कहा कि वे जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनकी मुखमुद्रा, उनके मनोभाव देखती हैं, उसी तरह से अपने प्रस्तुति को वो इम्प्रोवाइज भी करती हैं, थोड़ा बहुत उसमें जो भी उनको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए वो वही मौके पे देख के। तो उनको हमेशा वो सामने अगर दर्शक न हो, सामने उनकी मुखमुद्रा अगर स्पष्ट रूप से वो न देख पाती हो, तो उन्हें उस तरह से अपने अभिनय में, अपने प्रस्तुति में, इम्प्रोवाइजेशन में उन्हें वो बाधक होती है। और ऐसी ढेर सारी उनकी स्मृतियां हैं, अपने विदेश के अनुभव। जादू राम देवांगन जी जैसे बहुत एक शास्त्रीय पद्धति से लोक की भी अपनी जो परंपरा का शास्त्र होता है उस तरह से पंडवानी की प्रस्तुति होती थी। और उन्हीं की ये जो प्रस्तुति बाद फिर वेदमती और कापालिक इस तरह से विभाजन करके देखा जाने लगा। और उन्होंने उस पूरी शैली को, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने एक नया आयाम दिया, नई पहचान दी, और पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की उस कला विधा को उन्होंने स्थापित किया। और उस कला विधा के नाम पर छत्तीसगढ़ का भी सम्मान और पहचान पूरी दुनिया में बना।
1: सुरेश देशमुख, तीजन बाई की जहां तक बात है, बचपन से ही कलात्मक अभिरुचि की थी और अपने जीवन में उन्होंने बचपन से पंडवानी की शिक्षा ग्रहण की। पंडवानी की एक नई विधा उन्होंने शुरू की जिसे हम कापालिक पंडवानी के नाम से जानते हैं, जिसमें खड़े होकर, केवल बैठकर नहीं, खड़े होकर पंडवानी को पूरे अभिनय के साथ, मुद्राओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसी विधा को लेकर वो आगे बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नाम कमाया, बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए। मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: जी, मेरा नाम ऋषि छत्री है, मुझे लोकवाद संग्रह के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय तीजन बाई को मैंने आज से विगत 55 वर्षों से मैं जानता हूँ, उनके साथ काम भी किया हूँ। जब 1970 में मैंने पहली बार उनका कार्यक्रम देखा मेरे गांव में, सलोनी, ग्राम सलोनी जो खैरागढ़ के पास है, उस समय जो पंडवानी हुआ करती थी वो उसमें कोई मंच वगैरह से कोई व्यवस्था नहीं हुआ करते थे। और एक चीज और बता दूं, जैसे अभी जो कार्यक्रम होता है एक निश्चित कोई रकम धन देकर कार्यक्रम करवाया जाता था, उस समय वैसा नहीं हुआ करते थे। उस समय जो आरती और स्वेच्छा से जो दे दिए उन्हीं के बल पर ये कार्यक्रम हुआ करते थे। और जो महाभारत की जो कथा है 15-15 दिन तक गांव में हुआ करते थे, मैंने बहुत ध्यान से सुना। उसके बाद उनके साथ में मैंने 1987 में मैं उनसे जुड़ा, वो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय से कार्यक्रम करती थी। उन्होंने फिर 1987 में मनमोहना एक लोक संगीत पार्टी खोला, उसमें मैंने फिर वहाँ पर मुझे भी बुलाया गया, मैं उस समय लोक नृत्य करता था। उनके कारण हमने पश्चिम बंगाल आसनसोल स्टील प्लांट, बिहार धनबाद में, और सबसे बड़ी बात कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें 7 दिनों तक हमको कार्यक्रम देने का उनके साथ मौका मिला, जो हमारे लिए एक सपना था उस समय में।
3: छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की प्रतीक विदुषी तीजन बाई को आकाशवाणी रायपुर की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।
4: चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी है रे,

सेना, भीषम द्रोण कर्ण दुशासन, भीषम द्रोण कर्ण दुशासन, जियत भर के साथी।

0: ये था विश्व विख्यात पंडवानी गायिका विदुषी तीजन बाई के निधन पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम विदुषी तीजन बाई एक स्मृति शेष। आलेख वाचन और संपादन प्रकाश उदय, प्रस्तुतकर्ता रमा शंकर।
1: आई एक स्मृति शेष श्रद्धांजलि पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का
2: अभी आप सुन रहे थे विश्वविख्यात पांडवानी गायिका विदुषी तीजन बाई की कला साधना और लोक कला के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय योगदान पर श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम विदुषी तीजन बाई एक स्मृति शेष। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस वक्त शाम के 7:30 हुए हैं। आप हमारे मीडियम वेव पर ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। FM बैंड और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल।

जम्मू किसान भाई मतलब बिरजू भैया के राम राम। किसान भाई हो, अभी तो खरीफ कर समय चलत है और हमर जो किसान भाई हैं अपन खेती बाड़ी कर तैयारी में जुटी ना है। और जब खेती बाड़ी के बात करथन तो बारिश के भी बात करथन और देखथन कि मानसून जो है तनिक रुक रुक के आता है। तो भाई इंतज़ार तो करना है और अपन काम बुताला एकदम रेडी रखना है, तैयार रखना है कि जैसे ही बढ़िया बारिश होए हमन जो खेती कर काम है, हमर जो रोपा है वो शुरू हो जाए। और कुछ किसान भाई मन अपन कामला शुरू कर दें हैं, मकई बोए कर और धान बोए कर, तो बढ़िया बात है। समय देख के चलना बड़ा ज़रूरी है। किसान भाई हमन चौपाल कार्यक्रम में गुठियाथन भी कि भाई ये जो मौसम कर हाल देखा था नमन, तो भाई वैज्ञानिक मन कहता है कि भाई अलनीनो कर असर आ है, ओकर से तनिक बारिश कम हो ही या बारिश तनिक लेट होता है। तो भाई ये तो अपन प्रकृति कर नियम है, लेकिन हमला पूरा तैयारी करके रखना है। और किसान भाई हमन गुठियाथन जब पर्यावरण की बात करथन तो भाई पर्यावरण खातिर पेड़ बड़ा जरूरी है। और अभी बढ़िया समय भी है कि हमारे जो किसान भाई हैं पेड़ पौधा लगा सकते हैं, और चाहे वो फलदार पौधा कर बात करी, चाहे इमारती कर बात करी या बांस कर बात करी, तो ये बढ़िया समय है जो किसान भाई पहले से तय कर चुकी ना है कि भाई ये साल ये पौधा लगाना है तो के जरूर लगाएं। काबर कि भाई पेड़ पौधा से देखी हमला बहुत फ़ायदा है। काबर कि भाई हम जानथन कि पेड़ पौधा ही हमला सांस ले पर हवा देते हैं, हमारे जो पर्यावरण है ओला बढ़िया रखते हैं, हमारे जल संरक्षण में सहयोग करते हैं, हमारे जो मिट्टी क्षरण होते ओला बचाते हैं। तो कहले कि भाई पेड़ जो है गुट जीवन है और पेड़ से हमर जीवन जुड़ी से, तो बड़ा जरूरी है कि जो हमारे पास जंगल है, जो हमारे पास पेड़ है,

ओके बचाल जाए, और जहाँ भी जगह मिलत है वहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाल जाए, ताकि हमारे क्षेत्र का मौसम जो है फिर पहले जैसा हो जाए। हमन देखत हन कि दिनों दिन गर्मी यही क्षेत्र में पड़ता है, पहले इतना नहीं रही गर्मी, लेकिन हमन देखत हन कि जैसे जैसे हमारे जंगल कटत जात है, यहाँ के मौसम भी जलवायु भी बदलत जात है। तो ये हिसाब से हमन के सोचना है कि भाई कौन कस जो है हमन अपन जलवायु, अपन मौसम, अपन वातावरण, अपन पर्यावरण ला कैसे ठीक रख सकत हन, कैसे कोशिश कर सकत हन कि भाई हमारे जो चारों तरफ कर जो पर्यावरण है, चाहे वो माटी कर बात हो, जल कर बात हो, हवा कर बात हो, हमन कैसे सुरक्षित रख सकत हन, ताकि जो आए वाला पीढ़ी है उमन भी ये जो प्रकृति प्रदत्त कहली जो प्रकृति कर देहल वरदान है ओकर उपभोग कर सकें। तो ये हमर जिम्मेदारी बनत है और एक सामूहिक जिम्मेदारी बनत है कि भाई ये सब चीज़ ला हमन जो है मिल के बचाई। और किसान भाई अभी बढ़िया जो समय है कि कुछ किसान भाई पहले से तैयारी करके रखे हुई कि भाई इधर का का पौधा लगाना है, और पौधा के जब हमन बात करते हैं तो हमन पौधा उद्यान विभाग से भी ले सकत हन, वन विभाग से भी ले सकत हन, या फिर जो प्राइवेट नर्सरी वाला है उमन से भी हमन ले सकत हन। तो किसान भाई पेड़ ज़्यादा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ से हमर जीवन जुड़ी से। किसान भाई ये तो पर्यावरण कर हमन प्रयास करबे करथन, और हमर जो कह ली कि भाई जो खाली जगह है, चाहे हमारी स्कूल होगी, चाहे हमर कह ली कि भाई अमृत जलाशय है, या फिर जो हमर डबरी है वहाँ तो हमन किनारे किनारे पेड़ पौधा लगाबे करथन। साथ में अपन बाड़ी जो है, बाड़ी में भी हमन अपन बांस लगा सकत हन, पेड़ पौधा फलदार पेड़ लगा सकत हन, ताकि हमर जो पर्यावरण है सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे। किसान भाई देखिए पर्यावरण के साथ साथ स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, काबर की जहाँ स्वच्छता रहते वहाँ स्वास्थ्य रहते। तो स्वस्थ रहे पर बड़ा ज़रूरी है कि हमने अपन पर्यावरण ला ठीक रखी, चारों तरफ साफ सफाई रखी। अभी बरसात का मौसम है और ये मौसम में विशेष रूप से जो है साफ सफाई कर ध्यान देना जरूरी है, और हमन देखते हैं कि जहाँ पानी इकट्ठा होते मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, कई तरह कर समस्या हो जाते हैं, हमारे जो पानी पीथन वह प्रदूषित होकर आशंका बढ़ जाते। तो ये सब के हमन के ध्यान रखना है, और जो स्वस्थ रहे कर नियम है ओकर पालन करना है। किसान भाई आज हमारे जो कार्यक्रम है चौपाल, उसमें आज से शुरू होता है गुट नया कार्यक्रम चौपाल फरमाइश कार्यक्रम, जो कि लोकगीत कर फरमाइश कार्यक्रम है, और इसमें ज्ञान कर बात के साथ साथ मनोरंजन कर भी इसमें बात हुई, यानी लोकगीत रौर मन के पसंद पर सुनवाल जाही। तो ये कार्यक्रम शुरू करे से पहले आज देखी जो पद्मश्री स्वर्गीय तीजन भाई हैं, उनका आज निधन हो गई, तो उनके हमारे पूरा चौपाल विभाग के तरफ से भाई सादर नमन। और जब हमन नाम लेथन स्वर्गीय तीजन भाई के, तो हमने भी याद करतन कि जो हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, कला है, ओके पूरा देश पूरा दुनिया में पहुँचाइन, और हमारे जो छत्तीसगढ़िया संस्कृति है ओकर मान ला बढ़ाइन। तो चली शुरुआत करत हन अपन कार्यक्रम चौपाल फरमाइश कार्यक्रम। तो देखिए हमन पहला गीत सुनत हन कविता वासनिक कर आवाज़ में, और एकर बार अपन फरमाइश भेजना है पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। शिवपुर चर्चा कोरिया से अमर सिंह, चित्रांत सिंह, भानु सिंह, और रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। तो आई इनकर पसंद पर सुनती कविता वासनिकर गाल ए गीत।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भैया जी संदेश लग सुनत रहे। किसान भैया अभी खरीफ का समय है और ऐसे में जो हमन बीज लगा था ना उसे उपचारित करना बड़ा जरूरी है। एकर से क्या होता है कि जो फफूंद और बैक्टीरिया है वो हट जाते हैं और हमारे जो बीज है या फिर जो हमारे थरा है बढ़िया नुकते। यदि हमन रासायनिक उपचार करना चाहता धान बीज के तो 10 लीटर पानी में 20 ग्राम बावेस्टीन और 2 ग्राम जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल तैयार कर लें किसान भाई, और जो साफ करीन है बीज ला एक घोल में 24 घंटा खातिन डुबा के रख दें और फिर निकाल के जो है ओकर बुआई करें। किसान भाई यदि जैविक उपचार करना चाहते हैं तो जो ट्राइकोडर्मा होते ओके 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से जो है बीज से बीज के उपचारित जरूर करें। तो किसान भाई ये तुरेश जानकारी के बाद और अब चला थन हमर जो दूसर गीत पर फरमाइश आई से नान घाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा कर ये सुना चाहते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया कर गाल ए गीत। तो आई सुनल जाए एक गीत ला।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भाई, भारत सरकार द्वारा देखिए एक योजना चलाई जाता है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत, और देखिए अभियान के कोशिश ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं कम से कम जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जो दवा है ओकर प्रयोग करें, ताकि हमारे जो खेत है, हमारे जो पर्यावरण है वह सुधरे और किसान भाई मन के ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करल जाए। तो जो खेत बचाओ अभियान है उसका उद्देश्य यही है कि हमन जो है थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ मुड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद है, जैविक दवा है उकर उपयोग करी, जेकर से हमार पर्यावरण बढ़ियन रही, हमार स्वास्थ्य बढ़ियन रही और हमार उत्पादन भी बढ़ियन हो। किसान भाई, अब चलतन अपन अगला पसंद कर गीत के तरफ, और देखी ये जो गीत है लगाते हैं ध्रुवाराम मरकाम, और ये गीत पर फरमाइश भेजना है ग्राम राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, और अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट और चंचल केवट। तो आई इनकर पसंद पर सुनत ही एक गीत।

किसान भाई जे ए गीत ला सुनत रहें। किसान भाई, कभी कभी हमन ला लगथे कि हमन अपन फसल में ज्यादा खातू डालबो तो ज्यादा उत्पादन होई, लेकिन यह हमर भ्रम है। तो सबले जरूरी है कि भाई हमन अपन खेत कर मिट्टी कर जांच करा ली और ओ हिसाब से हमर खेत के का जरूरत है और कितना यूरिया डालना है, कितना DAP पोटास कितना डालना है, हिसाब से यदि हमन डाली तो हमर फसल भी बढ़िया होई और हमर जो स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, वो बढ़िया रही। तो अब चलिए किसान भाई, चलत हन अगला गीत की तरफ और ये लगाता हैं कुलेश्वर ताम्रकार और ममता चंद्राकर। और ये गीत पर फरमाइश भेजना है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से और उदयपुर से संतोष राम, सतीश राम और बरिया राम। तो आई सुनती ये लोकगीत।

किशन भाई, अब यही गीत के साथ हमारे जो चौपाल फरमाइश कार्यक्रम है ओके समाप्त करा था ना, और हमारे जो किशन भाई जो नया फरमाइश अपन भेजना चाहते हैं किशनवाड़ी अंबिकापुर 2026@gmail.com पे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, और उनका जो है पसंद कर गीत सुनवाल जाए। तो किशन भाई, आज अब रावण से विदा लेकर समय हो गई से, तो चल जाए। राम राम।

किसान भाई बहन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं। इस वक्त रात्रि के 8 बजे हैं और पेश है कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया की गूंज प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश में। साथियों, आज प्रोग्राम में आपके द्वारा पोस्ट किए गए गाने और संदेशों को लेकर हाजिर हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र रहना। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल तैयार बैठे होंगे कि बस आपका नाम प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश में गूंजने वाला है मधुर तरानों के साथ। तो देर किस बात की, लीजिए पेश है आज प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश में ये पहला गाना पहुंच रहा है आप तक। फिल्म का नाम है इजाज़त और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत बद किया है आरडी बर्मन ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी गोस्वामी, नरेंद्र कुमार तिवारी और महेंद्र कुमार तिवारी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, नोहरसाय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम, आरती मरकाम। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, कुरमा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मेरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मेरी, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे, मुंडा टोला डोंडी लोहारा जिला बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश माहिर नेताम। ग्राम धोराबांधा भाटापारा से प्रमोद कुमार साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू। सरलाही सुकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी शर्मा। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय

मीर साहेब श्री भगत हेमंत कुमार राम खिलावन सिंह पैकरा। तो आइए आप सभी साथियों की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म इजाजत से।

इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ध्यान रखें कि ये पोस्ट प्रतिदिन सुबह 10 बजे हमारे सोशल मीडिया पेज पर डाली जाती है और शाम 5 बजे तक प्राप्त होने वाली फरमाइशों को ही कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। और अब देखते हैं कि आज इस अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हमारे कौन से श्रोता साथी हैं। लीजिए आप कार्यक्रम में सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म सर का गीत। गीत के बोल लिखे हैं कतील शिफाई ने और संगीत अनु मलिका है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता आकाश आयुषी, सागर यशी, हनी पूजा सीता और परिवार के सभी सदस्य। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से आप हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, गोरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। और बड़ी गैभी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार और साई दर्शन वाराणसी से मुक्ति मीनाक्षी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आमागाजी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर से हैं मुनेश, सालिनी, रुचिका, अनिका, मनीषा, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पोस्ट मिली है जिला सूरजपुर रामानुज नगर श्रीनगर ग्राम पंचायत कौशलपुर से सुखराम सिंह मरावी का। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में अपनी पसंदीदा फरमाइश भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। वहां प्रतिदिन एक विशेष पोस्ट डाली जाती है। अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा गीत, अपना नाम और आवश्यक जानकारी लिखकर कमेंट करना है। आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों को हम इंस्टा फरमाइश

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। लीजिए अब पेश है फिल्म संग्राम का ये गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, धनौरी तेलीवाला, उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, गुलबालौद तहसील आलौड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवी, रचना मालवी, कमलाबाई वंदेवी, आकाश महेश्वरी, विनायक और समस्त मालवी परिवार। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति और स्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एसडी गुप्ता, कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, गांव लोहोडडा ज़िला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी, चौखड़ा ग्राम कॉलोनी सनावत से आप हैं ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित सिंह और वैभव पाल सिंह चौहान, लचनपुर बलौदा बाजार से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। और इस गीत से कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन अंसारी, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, मनहरण लाल साहू और कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय, रुद्रांश प्रताप साहू। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म संग्राम का ये प्यारा सा गीत।

मलिक माही मलिक, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, राज पैलेस मऊनात भंजन उत्तर प्रदेश से आप हैं, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात, ली चौक उत्तम नगर दिल्ली से सपना अवस्थी, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवार, चंद्रकला रेवाड़, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, फवारा चौक वार्ड 6 सिरसला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल और कार्तिक, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई से लॉर्ड छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल घोड़के वैशाली, अनिल प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री यज्ञेश और गांव टूरवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांडी, सैयद हुसैन, सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांदले और आप हैं धोतर जोड़ा आस्टी से दशरथ सागूते और अनुष्का सागूते, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म गोपी किशन का गीत कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में इस अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में इस अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदाड़े और जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, मनीष वर्मा, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, आप सभी श्रोता साथी हैं खंडवा मध्य प्रदेश से और अब्दुल गफ्फार डावर आप हैं खंडवा मध्य प्रदेश से, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोढ़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद एसहा, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म मोहरा का गीत, शब्द रचना है विजू आनंद बख्शी की और संगीत है विजू शाह का।

0: कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से, और लीजिए अब सुनिए फिल्म नमक हलाल का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, संगीत पप्पी लहरी का है, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी। चकरभाटा कैंप से डी आर नारवानी, रवि चांदनी, खुशी नारवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ शौर्य नामदेव, आकोट से विनायक बिंडे, मंगला बिंडे, विजय शुभम बिंडे, चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी, और राज कमल रेडियो श्रोता संघ आष्टे जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, और मिठू मोड़ा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, नरेंद्र कृष्ण कुमार यादव और गेंदू भाई, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, गुजरात गांधीनगर से जी के परमार, ज्योत्ना परमार, हर्ष परमार, दीपल परमार और उर्वशी परमार, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, और जोड़ा पीपल अंबिकापुर से स्वरूप आनंद सरजाल। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म नमक हलाल का ये गीत।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एसकाले, तेजस एसकाले और लोकेश एसकाले, ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नौहाकर, निर्मला विशाल नौहाकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तांडे और आशीष मुरहेकर, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्रे जिला धमतरी से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम सावित्री और शिफा शिखा सेफाली, कस्बा बराडा अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरु शब्द सिंह राहुल, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, सुशील येले, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा और दत्रिंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश अब रैना को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि

0: शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के

0: पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम

एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म तीन देवियां का ये गीत।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे। संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। लीजिए आप सुनिए मुकेश की आवाज में फिल्म हिमालय की गोद में फिल्म का गीत। गीत को लिखा है कल्याण जी, माफ कीजिएगा, आनंद बख्शी ने, और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

0: राम राम हो किशन भैया।
1: राम राम बिनु भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ए दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अब ये तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जमीन आसमान का ये गीत। गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत R.D. परमन का है।

0: सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम दिल्ली से रिले करते हैं।
1: इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

श्रोताओं खेद है हमें इस गीत को आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। शहर की अपनी एक कहानी होती है, कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियन, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन है, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क आए हैं, जहाँ ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग

0: 1000 to 1200 crores every year to bring it to level where people even at 500 meters. अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
1: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादू बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
0: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का। इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है। जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
1: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर की जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो EV का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर e-waste recycling।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षा।

0: मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
1: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फीड उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
1: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का युग आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है भाई, ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, ये डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है, बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर और

0: आती है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग काम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ है, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सके।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है और बार बार यही सोचती हूं कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी

0: करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रेनिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपनी पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहां लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बस्ती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
4: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है, आशीष तानीपुरति, जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
4: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के। बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग

0: मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मांदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस बात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकर लाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Sri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on. Participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankar Lal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है।

0: में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continue.